0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: बड़ा आराम AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: your location for maximum music. It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
7: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबिन जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
10: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
11: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
13: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
15: 100 FM.
16: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: AGS ट्यूबलर दिखाए काम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
5: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
8: And हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
8: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: एंड
13: MCB बैंक फॉर लाइफ।
5: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
5: एंड

0: अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप मंडे मॉर्निंग को ऐसे एक्साइटेड होंगे जैसे कि मैं हूं. ओह माय गॉड, आई लव मंडे. ऐसा कोई बात नहीं, कोई मंडे को पसंद नहीं आता, लेकिन मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि मैंने रहना है खुशबाश इवन ऑन अ मंडे मॉर्निंग. एनीवेज, और हमेशा अपने दिन का आगाज कीजिए अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी कि उसने आपको एक और दिन दिया है कुछ बहुत खास करने के लिए, वो भी जून के लंबे दिनों में. तो हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आइए सुनते हैं सूरह दुहा का तर्जुमा. औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. चढ़ते दिन के वक्त की कसम और रात की जब वो ढांप दे, तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा और ना पसंद किया. बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे. कितनी खूबसूरत आयत ये है और कितनी आपको हिम्मत मिलती है कि बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे. तो अल्लाह ताला हम सबको इतना दे और राजी हो जाए. और फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की मोहब्बत का भी इजहार है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मोहब्बत जाया नहीं करता. जब अल्लाह बंदा अपने रब की तरफ मुतवज्जा होता है तो रब उससे कहीं ज्यादा अपने बंदे की तरफ मुतवज्जा होता है. तो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे और उसे याद करते रहे. एनीवेज, और आप लोग मुझे मैसेज करें, टॉपिक मैं आपको बताऊंगी मगर एक ब्रेक के बाद. सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जस्ट कैश है ना.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: AGS ट्यूबलर. दिखाए काम AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम.
6: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
3: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
3: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
8: एंड MCB बैंक for life.
9: And live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.

0: 24/7, 365. FM 24/7, 365. Good morning, Pakistan. With RJ Samiha.
1: वेलकम बैक, ये आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा। और वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि यकीन करें मैं इस टॉपिक की वजह भी है क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिली कुछ अभी इन्हीं दिनों में और मुझे ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी रुक गई है। मतलब वो एक ही जैसे माहौल में रहते हैं, एक ही जैसे लोगों से मिलते हैं और फिर अब लोगों को लगता है कि जी टिकटॉक से उनकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है। एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि टिकटॉक से आपकी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं बढ़ी है। टिकटॉक क्योंकि इल्म हासिल करने का जो सफर है वो इतना आसान नहीं है। वरना तो हर कोई टिकटॉक देख के डॉक्टर बन जाए, टिकटॉक देख के इंजीनियर बन जाए, टिकटॉक देख के कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट बन जाए, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट बन जाए, व्हाटएवर। क्योंकि तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और ना सिर्फ सीखने वाले के लिए, सिखाने वाले के लिए भी ये एक प्रोसेस होता है। और बहुत सारे लोग सारी उम्र इस प्रोसेस से दूर भागते रहते हैं तो इसलिए उनकी नॉलेज नहीं बढ़ती, वो उन्हीं ज्यादा सर्कल्स में रहते हैं। अब टिकटॉक का भी मसला ये है कि अगर आप गांव से एक टिकटॉक बना रहे हैं तो आपके जो टिकटॉक के जो आपके पास आ रहे होंगी चीजें, जो आपका एल्गोरिथम आपको बता रहा होगा, वो गांव के ही टिकटॉक वाला बता रहा होगा। तो इसलिए कि आप सीख तो सकते हैं लेकिन आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती अगर आपका एनवायरमेंट नहीं बढ़ता, अगर आप उन्हीं लोगों में रहते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक, इतनी लंबी तमहीद मैंने मान दी, ओ माय गॉड। तो आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि अकल कहां से आती है, इंसान वक्त के साथ साथ ज्यादा अकलमंद कैसे हो सकता है। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वक्त के साथ साथ जो है सिर्फ बुजुर्ग ना बने, मतलब बुजुर्ग भी नहीं बल्कि ऐसे बूढ़े ना हो। गालिब की एक लाइन भी है कि आप बूढ़े हो गए हैं बुजुर्ग नहीं। और कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में बुजुर्ग बन जाते हैं, कुछ लोग बड़ी उम्र में भी बुजुर्ग नहीं बनते। तो सिर्फ उम्र गुजरने से जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जहीन या बहुत अकलमंद हो जाएंगे। आपके लिए जरूरी यह भी है कि आप वक्त के साथ साथ अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। तो इसलिए आज का मेरा सवाल है कि आप ज्यादा से ज्यादा अकलमंद या समझदार या वाइज इंसान कैसे बन सकते हैं। फिलहाल तो हमारा शो सुन के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें मैसेज करें आरजे समीहा की फेसबुक पेज पे या @RJSamiha इंस्टाग्राम पे। हमारे पास ऑलरेडी आप लोगों के मैसेजेस आए हुए, नहीम बलोच, मंजूर हुसैन मलिक, नजीर खोसो का भी मैसेज आया हुआ है। कैसे आप नहीम बलोच साहब, बच्चे कैसे हैं, ठीक है, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। मंजूर हुसैन मलिक साहब का भी मैसेज आया हुआ है, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, उम्मीद करता हूं सब खूबसूरत प्यारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। इकबाल हुसैन साहब की तबीयत खराब है, अल्लाह उनको सेहत दे। और आज के टॉपिक के हवाले से यही कहूंगा कि माशाल्लाह आप जैसे टैलेंटेड खूबसूरत इंसान का दोस्त बनकर फिर हम अकलमंद हो सकते हैं। डियर राजे समिया साहिबा, बाकी अल्लाह ताला मौला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला मौला आप सब खूबसूरत प्यारे दोस्तों को हमेशा खुशोखुर्रम शादोबाद रखे, आमीन। दुआ का तलब गार एमज मलिक। ऑल राइट, तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि आपके ख्याल में कैसे इंसान वक्त के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अकलमंद हो सकता है। और इंजीक कैसे हैं आप, इंजीक भी कुछ कह रहे हैं धोखा खाने के बाद, दगाबाज रे तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। ये जो दगाबाज लोग होते हैं ना, ये बहुत कुछ सिखा देते हैं ना। खैर आप टेंशन ना लें एनजीक साहब, हम आ गए हैं ना आपके पास, तो हमें आप मैसेज करके बता दें। एनजीक ने तो बता दिया कि धोखेबाज बंदा धोखा खा के बहुत समझदार होता है, अकलमंद इंसान तजुर्बे से सीखता है, मगर जो अकलमंद नहीं होता वो तजुर्बे पे तजुर्बे करता जाएगा मगर सीखेगा कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। खैर हम आपके लिए प्ले करे हैं अभी फीफा का ये ट्रैक। खैर फिलहाल तो मुझे फीफा की, बिकॉज आई थिंक आई डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट यूएस एनी मोर। तो जो उनकी तकरीबात हुई, जो उनके गाने हुए, फ्रेंकली मुझे तो समझ नहीं आया। और मुझे लगा कि इससे पहले वाला कतर के अंदर जो फुटबॉल हुआ था, आई थिंक इट वॉज लाइक द सॉन्ग एंड द होल वाइब वॉज मोर अमेजिंग। एंड ऑफकोर्स वी वर मुस्लिम, यू नो एज अ मुस्लिम कंट्री वी कुड रिलेट टू इट मोर एंड दे डिड एन अमेजिंग जॉब। और यूएस ने तो जाहिर है ईरान पे हमला करके और उसके बाद बहुत ज्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी और उसके अलावा भी जो वो सलूक कर रहे हैं वहां पे लोगों के साथ, تو یو نو اٹس ناٹ ویری نائس. خیر اب فٹ بال ان کو دینے کی ضرورت ہی آ رہا ہے نا, خیر ساری چیزیں یو ایس میں اور پیرس میں کیوں ہونی ہوتی ہیں, لیکن خیر اینی ویز. تو ابھی ہم آپ کو پچھلے فٹ بال کا یہ گانا پلے کر رہے ہیں, لیٹس انجوائے.

थी तो ज्यादा अच्छा था. जो भी मेल उठे एक नाश्ता तो भिजवा ही दे. थैंक यू सो मच उमर बाब. तो आप लोग मुझे मैसेज करें कि अपने मैसेज बॉक्स में चाहें टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि आप में अकल कहां से आ रही है अगर आ रही है. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.

0: कमाल बैकअप से एजीएस ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
8: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
9: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
11: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
1: and Cool King Hair Oil. Jaise chalta

0: 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा और आज हमारा टॉपिक ये है कि आप ज्यादा वक्त के साथ साथ ज्यादा अक्लमंद और समझदार कैसे हो सकते हैं और ये एक सवाल है और कि आबिद अमीर साहब का मैसेज आ गया हमारे पास और आबिद अमीर जो है वो अच्छे मैसेजेस करते हैं और मैं वो जरूर इंशाल्लाह शामिल करूंगी अपने शो में और आप लोग भी मुझे मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या आजय समिया इंस्टाग्राम पे। और एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर। तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि हम आपको क्या लगता है या आपकी इस बारे में क्या जस्तजू है कि वक्त के साथ साथ हम मजीद समझदार कैसे हो सकते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Hired No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। No Frost, No Worries.
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
7: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling aur Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
8: Agar Aap Hain In-Drive Car, Bike ya Rickshaw Driver, To 4 Mai Se 12 Julai Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le,
0: and
9: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% Aage Badho Bina Ruke,
0: and
10: MCB Bank for Life,
0: and
11: Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today,
0: and

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी।
5: का टाइम सी मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साडिया वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Bukhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King. Chai hotel mein baithe ho. Chai garam, mausam garam. और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गर्म. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
3: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: एक दुनी दो, दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
6: दुनी दो, दो दुनी चार.
8: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी. घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
10: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम,
9: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
10: And हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड लाइव फॉर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
12: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
0: एंड
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: And
13: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
0: And
14: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: And
15: आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
16: facebook.com/fm247365
17: 365.
18: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
19: Let's celebrate the journey.
20: FM 100 traffic update.
21: के साथ मैं हूं फरोख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफ एम 100 को मिलने वाले इत्तला के मुताबिक मंजिल पंप से कायदाबाद और कायदाबाद से एयरपोर्ट की जाने आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का कुछ दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वो ट्रैफिक जो दाऊद चौरंगी से मुर्तजा चौरंगी और वहां से सिंगर चौरंगी के रास्ते ब्रूक्स चौरंगी की जानब जा रहा है, ऑफिस टाइमिंग की वजह से दरमियानी रास्ते पर कहीं कहीं ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। लिहाजा वो तमाम लोग जिन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहें ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
20: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: क्या आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग,
2: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: ए दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
6: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
8: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
10: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म नहीं।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, or Energy Saving, No Frost, No Worries,
5: and Agar Aap Hai InDrive Car, Bike, Rickshaw Driver, Toh 4 Mai Se 12 Julai Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le,
6: and Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% Aage Badho, Bina Ruke,
7: and MCB Bank for Life,
8: and Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today.
9: And
10: तूफान है ये, हर जीत की पहचान है ये,
9: and
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
9: and
12: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
13: Like us on facebook.com/fm247365
14: FM 247365

0: honking. बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365. बैन अल-अक़वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ। ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
3: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان

0: एयर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
4: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: लाइक अस ऑन Facebook.com/FM247365.
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, khub sari aap se baatein hongi, kuch information share karenge, aapke haal hawal janenge, chutti ka din kaisa guzra, kya rahi masroofiyat, aaj ka mausam kya kehta hai, aage aane wale dinon mein kya surat haal hai. To ji, ye baat to tay hai ki hongi aap se khub sari baatein program lunch time special mein. तो चलें जी करते हैं प्रोग्राम का बकायदगी से आगाज, क्योंकि प्रोग्राम का बकायदगी से जो आगाज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो चलो जी, लेट्स बिगिन.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो चुका है तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जी आपको बताया जाए तरीका एक कार कि कैसे आप भी हाजिरी लगाकर बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जी उठा लें अपना मोबाइल फोन और जाएं उसके राइट मैसेज ऑप्शन में, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो जी इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल अहवाल बता सकते हैं। एंड आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। लेकिन ये सब बताने के लिए हमें आप ही की जानकारी की जरूरत है ताकि पता तो चले कि कैसा गुजर रहा है आप सबका दिन। अच्छा, कैसा गुजर रहा है आज का दिन? आई होप सो कि अच्छा गुजर रहा होगा क्योंकि जी आज कराची का मौसम बहुत अच्छा है। एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि डेढ़ महीने बाद जाकर थोड़ा बेहतर मौसम है। और इस वक्त कराची का दर्जा हरारत भी बहुत ही शानदार है, बिकॉज 34 है एंड रियल फील्स लाइक इज 35। जी हाँ, महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत इस वक्त कराची में 35 है, जो कि हम कराची वालों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे लिए तो ये मौसम बड़ा ही कोई लश पश किस्म का है। द गुड थिंग इज दैट कि भाई मौसम की खबरों में थोड़ी सी तब्दीली भी आई जो कि हम सब कराची वालों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। जैसे कि गुज़िश्ता हफ्ता बहुत ही ज्यादा, जो हफ्ता गुजरा बहुत ही गर्म तरीन रहा, बड़े रिकॉर्ड टूटे गए, उसी के साथ साथ हीट स्ट्रोक के केसेस में बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन ऑल दो ये हुआ कि जिस दिन शदीद गर्मी पड़ी उससे नेक्स्ट डे गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। हालांकि ये था कि जुमरात और जुम्मा दोनों ही बड़े ही पीक के गर्म तरीन दिन गुजरेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से ये हुआ कि मौसम में आ गई जरा सी बेहतरी और एक एक दिन गुजरता गया और मौसम जरा बेहतर होता गया। और आज के जो नए हफ्ते की शुरुआत है वो भी बड़ी शानदार हुई है। बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। कल कराची के चंद इलाकों में रिमझिम यानी कि बूंदाबांदी भी रिपोर्ट की गई है। सो आई थिंक अल्लाह ताला ने हम लोगों पर रहम कर दिया है। हाय अल्लाह ताला, तू चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस इस मौसम में जरा सी हमें रियायत मिल जाए, जरा गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाए तो भाई मजा ही आ जाए। क्योंकि भाई अभी ना एक अच्छे मौसम की हम सबको रिक्वायरमेंट भी बड़ी है, और क्यों है इस पर भी बात होगी। छुट्टी के दिन पर भी बात अभी बाकी है, तो बातें तो भाई बहुत सारी बाकी हैं जो कि हम आपके साथ करेंगे। तो चलें जी सबसे पहले एक अदर ट्रैक की जानब चलते हैं और फिर वापस आकर जरा कल के दिन को भी डिस्कस करते हैं। क्या सूरत हाल रही आपकी कल के दिन?

यस, तो भाई कैसा गुजरा आप सबका कल का दिन? क्या रही आप सबकी मसरूफियात? भाई कहीं आना जाना हुआ या फिर आराम किया, या करने को थे भाई बहुत सारे काम? क्योंकि छुट्टी वाले दिन को जब भी जिक्र किया जाए ना, तो याद आता है आपको कि बहुत सारे काम आपको ऑलरेडी इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि छुट्टी वाले दिन जैसे हम सोचते हैं कि जी सिर्फ आराम करेंगे या फिर घूमने फिरने जाएंगे, तो यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि छुट्टी के दिन में एक्चुअली काम बड़े सारे होते हैं। और क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था, तो वो काम जो गर्मी की वजह से वैसे ही अवॉइड किए जा रहे थे कि जरा मौसम बेहतर हो जाए तो चलो करेंगे, तो वो भी हो सकता है कि भाई आपने कल के दिन किए हो। यानी कि भाई छुट्टी का दिन कहने को तो एक या दो दिन होते हैं, लेकिन इस एक या दो दिन में हम इतने सारे काम कर रहे होते हैं जो कि शायद हम पूरे हफ्ते में नहीं कर रहे होते, लेकिन इन दो दिनों में ना वो काम जरूर किए जा रहे होते हैं। तो भाई क्या क्या काम किया आपने अपनी छुट्टी के दिन? कोई काम किया भी या फिर आराम किया? कहीं आना हुआ, कहीं जाना हुआ, या फिर बना कोई प्लान? जी हाँ, प्लान भी वो, यानी कि पिकनिक का प्लान। क्योंकि भाई कराची वाले तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जून जुलाई बच्चों की छुट्टियों का जो टाइम होता है वो बेसिकली पिकनिक्स एंड पार्टीज का टाइम होता है। बिल्कुल भाई, बारबेक्यू पार्टी चल रही है और उसी के साथ साथ जो है वो फार्म हाउस पे जाया जा रहा है या फिर समंदर पर जाया जा रहा है। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे लोगों के बड़े नखरे होते हैं। कोई ये कहता है कि जी जरा मौसम को बेहतर होने दो, जरा बारिशों वाला टाइम आए तो जाएंगे। किसी को अपने रंग की फिक्र होती है कि अभी बहुत गर्मी है, बॉडी काले हो जाएंगे। किसी को समंदर पे जाना होता है तो किसी को फार्म हाउस पे। तो ओ माय गॉड, आई थिंक इस दौरान ये जो प्लानिंग होती है ना पिकनिक की, बड़ी मुश्किल होती है भाई। तो क्या आपके घर में भी ये वाले प्लान शुरू हो चुके हैं या फिर नहीं? आपके कहने पर याद आए कि बहुत टाइम से पिकनिक पे नहीं गए, तो क्यों ना इस साल जाया जाए। या गर्मी को मद्देनजर रखते हुए जो भी प्लान बनाने का सोचा था उसे कैंसिल कर चुके हैं आप? तो क्या है प्लान, क्या है स्टेटस आपका, ये भी हमें जरूर बताएं। क्योंकि भाई जून जुलाई का टाइम जो है वो बेसिकली पिकनिक्स का जरूर होता है। तो आपका भी कोई पिकनिक को मद्देनजर रखते हुए प्लान है या फिर नहीं? तो क्या अपडेट्स हैं, जल्दी जल्दी हमें बताएं। जब तक हम भी चलते हैं जी एक अदर ट्रैक की जानेब, आपको देते हैं सोचने का मौका, फिर वापस आकर जानेंगे कि भाई आप लोगों ने पिकनिक को मद्देनजर रखते हुए क्या प्लानिंग की है। जब तक आप हमें बता रहे हैं, मैंने सोचा कि ट्रैक की जानेब चलते हैं।

कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: जी तो भाई कैसा गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन, क्या रही आपकी मसरूफियात? ये होता है मंडे वाले दिन का लाजमी सवाल, तो आप लोग हमें बता ही रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास जरी नूर का भी मैसेज आ चुका है, कहती हैं सलाम, कैसी हैं, तबीयत कैसी है, बहुत सारी दुआ आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तबीयत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि वो जो नहीं होता कि रात भर की जगार जब आप बहुत ज्यादा जाग लेते हैं तो वो आपके गले को मुतासर कर देती है, तो आज कुछ ये सिचुएशन हुई है मेरे साथ। बहुत ज्यादा जाग ली है, सोए बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाता है। तो मेरे साथ आज बस ये है, बाकी तो आई एम ऑल वेल। ऑल राइट, इसी के साथ साथ कहती हैं कल का दिन बहुत बिजी रहा, मेहमान आए हुए थे। ओके, तो भाई जरी नूर की कल मसरूफियात ये थी कि इनका दिन इसीलिए मसरूफ रहा क्योंकि मेहमान आए हुए थे। इनामुल हक हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहते हैं आपका संडे कैसा गुजरा, क्या मसरूफियात थी? ओके बिल्कुल जी, हम भी लोग में से पूछते थे, लोग अपने पूछते हैं। ऑब्वियसली मेरा भी संडे अच्छा रहा, काफी मसरूफियात भी रही और संडे जो था वो मैं अपने अपनी खाला के घर गुजारा, तो बहुत ज्यादा बिजी रहा और अच्छा रहा, मतलब बड़ी मसरूफियात रही, सब लोगों का मिलना मिलाना, आना जाना, और कल हम लोग बाहर भी गए, तो कल मेरा संडे इज वेरी वेरी बिजी, मतलब रेस्ट लेस संडे मेरा कल का गुजरा। यानी कि कल के संडे में कोई आराम नहीं हुआ, सिर्फ मसरूफियात रही क्योंकि बाहर आना जाना भी लगा रहा, कुछ ना कुछ

आराम नहीं हुआ, सिर्फ मसरूफियत रही क्योंकि बाहर आना जाना भी लगा रहा, कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन रेस्ट नहीं हुआ। अ बिजी संडे एंड अ गुड संडे ऑल्सो। कभी कभी आप बड़े मसरूफ संडे गुजारते हैं लेकिन वो अच्छा गुजरता है, तो कुछ ऐसा गुजरा मेरा कल का संडे। नींद तो अलबत्ता पूरी नहीं हुई लेकिन फिर भी अच्छा रहा। तो ये है जी मेरे संडे की कहानी। अब आपके संडे की कहानी भी सुनते हैं आप ही की जुबानी। तो आप हमें जल्दी से अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। जब तक चलते हैं हम एक जबरदस्त ट्रैक की जाने।

ओके जी, सो देखा ना था कभी हमने ये समा। ये भी भाई वो ट्रैक है लाइक फॉर एवर ग्रीन ट्रैक। तो ये ऐसे ट्रैक्स हैं जब भी सुनो ना एक मजा आता है, आप एक खुद ब खुद ही बैठे बैठे झूमने लगते हैं। तो ये उन गानों में से एक गाना है जिसे जब भी सुनो यू फील सो गुड। और अक्सर औकात वाकई में ऐसा मौका भी आता है कि जिस पर ये ट्रैक बड़ा सूट करता है तो आपको और ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक से कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई यादें वाबस्ता हैं या फिर बहुत सारी चीजों से हम रिलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी बड़ा मजा आता है। अच्छा भाई, हमारे पास एक और मैसेज आया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। कहते हैं आप ही छुट्टी का दिन तो अच्छा गुजरा लेकिन नींद हुई भी और नहीं भी। ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि नींद हुई भी और नहीं हुई। तो ये हुआ कि जरा बेचैनी सी रह गई। क्योंकि वाकई में अगर ये जो वाली नींद होती है ना, जिसे जिन्हें नींद में उठने की बड़ी आदत होती है, उठने की बड़ी आदत होती है, इन द सेंस की बड़े बेचैन रहते हैं कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब ठीक है, ये मसला मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। तो वाकई में इतनी फिर आप डिस्टर्ब रहते हैं ना कि अगर आपकी नींद सही से पूरी ना हो, और अक्सर औकात आप कभी इतना सुकून से सोते हैं, वो कहते हैं ना वो एक मीठी मीठी प्यारी सी नींद जो आप कभी कभी ले लेते हैं, और भले उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम ही हो, यानी कि कुछ मिनटों की हो, लेकिन वो जो कुछ मिनट होते हैं ना वो आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन मिनट होते हैं। क्योंकि वो जो मीठी नींद आप लेते हैं ना, उससे आप इतने फ्रेश हो जाते हैं, इतने फ्रेश हो जाते हैं कि लगता है कि आपकी जो बैटरी है ना वो अब फुली चार्ज है। और कभी कभी आप घंटों सो लेते हैं लेकिन आप पीसफुली नहीं सो पाते, तो वो आपका घंटों सोना ना जो है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन जी, स्लीपिंग पैटर्न पर अब ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन ना करने की वजह से आप बहुत सारे मसले मसाइल और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी, आपकी शुगर भी, बहुत सारी बीमारियां आपके सोने से लिंक करती हैं। शायद ये बात हम जानते नहीं हैं, या फिर शायद जानते तो हैं लेकिन इस पर नजर नहीं डालते। लेकिन नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रात भर हम अपनी रातें मोबाइल की नजर कर देते हैं ना, इसके बड़े नुकसानात हैं जिसका शायद अभी नहीं कभी नहीं तो कुछ दिनों में आपको इसका एहसास होगा या कुछ सालों में। क्योंकि भाई अल्लाह ताला ने रात बनाई ही सोने के लिए है, तो इसे सोकर गुजारे ना कि जागकर। और दिन बनाया है काम के लिए, तो दिन में करें आप काम, रात को सोएं जल्दी, सुबह और रात को सोएं जल्दी और सुबह उठें जल्दी। इस तरह का रूटीन जब आपका सेट रहेगा ना, तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी और आप फिट भी रहेंगे। तो ये रूटीन को ना फॉलो करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो ऐसा हमने क्यों किया है ये भी मैं जानना चाहूंगी आप ही की जबानी। ताकि पता तो चले कि भाई जो रात भर जागने का एक ट्रेंड है कराची में तो बिलखुसूस बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअली में ऐसा है तो है क्यों? किसी ने जबरदस्ती की है या आपकी आदत बन चुकी है या ये वो आदत है जिसे छुड़ाने की कोशिश तो बड़ी की है लेकिन ये साथ नहीं छोड़ रही? तो भाई सूरत हाल क्या है जरा ये भी हम जानते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाते हैं या नहीं सो पाते, और नहीं सो पाते तो क्यों नहीं सो पाते, ये बात भी आप ही की जबानी जानते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। जब तक आप सोच रहे हम एक ट्रैक शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। एंड
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365.
3: You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
2: Join Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Because program ke second half mein hum dakhil ho chuke hain. Guftugu ka silsila aap logon ke saath hamara jari hai. तो भाई क्या हाल हवाल है आपके, हमें जरूर बताएं. जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें बताते चलें कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जा सकते हैं कि ये चाहे लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, ताकि इस तरीकाकार के जरिए आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें बताएं कि जी सर आप हमें सुन कहां से रहे हैं. तो भाई बहुत सारे, एक तो हमारा कंपलसरी सवाल क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि हमारा लाजमी पूछे जाने वाला सवाल कौन सा होता है. लेकिन उससे पहले एक अदर ट्रैक आप सभी के नाम, क्योंकि प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत होती है कि जी एक अदर ट्रैक हम करते हैं आपको डेडिकेट. और आज मैंने सोचा कि चलें जी वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक मीन दिस इनका ट्रैक करते हैं आपको डेडिकेट, और उसके बाद आते हैं वापस अपने सवाल की जानिब.

ओके जी, सो ये ट्रैक हमने किया है आप सभी के नाम, एंड आई होप कि ये ट्रैक आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। और भाई मैसेजेस तो बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि वो सवाल जो कि हम आपसे रोजाना की बुनियाद पर पूछते हैं, यानी कि सवाल जो कि कंपल्सरी है, यानी कि पूछना ही पूछना है, वो सवाल ये होता है कि जी आपके लंच में क्या है, क्या पक रहा है, क्या पकने जा रहा है, क्या पक चुका है, क्या आपके डब्बे में इस वक्त मौजूद है। तो भाई आपके लंच में क्या है ये जाने बगैर तो प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल अधूरा है। तो भाई आपके लंच में इस वक्त क्या है, दाल चावल है, कबाब है, बिरयानी है, निहारी है, सब्जी है, या फिर कुछ और है मुनफरिद, तो क्या है लंच में हमें जरूर बताएं। और इसे बताने का तरीकाकार भी यही है कि आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, कि ये चाय लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। और इसी के साथ साथ भाई हमें जरीन नूर ने भी अपना लंच बता दिया जिसे हम शामिल करेंगे। भाई जरीन नूर ने कहा है कि आज खाने में पालक गोश्त और मिक्स सब्जी, बॉयल चावल, सैलेड एंड जबरदस्त पालक गोश्त भी बहुत मजे का लगता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात सुनी है कि पालक गोश्त को कभी चावल के साथ ट्राई करें, ये मैंने आज तक कभी नहीं किया। मुझे पालक गोश्त बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी चावल के साथ खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि सोसाइटी का बड़ा प्रेशर आ रहा है कि पालक गोश्त को एक दफा चावल के साथ ट्राई करना बनता है। तो बिल्कुल भाई, एक दफा मैं भी इसे जरूर ट्राई करूंगी। मैंने सुना है कि जो पंजाबी इसे शौक से खाते हैं उनका ये एक मजे का मील है और बिल्कुल बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है कि चावल के साथ हर चीज ना खा ली जाती है, मतलब चावल के साथ हर चीज जायज है। तो बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन अब मुझे भी ट्राई करना है। इसी के साथ साथ जो है वो हमें मैसेज करते हैं और मैसेज करती हैं। ओके भाई, आज हमारी लुक वर्ल्ड भी आ चुकी है सामने, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लवली आरजे आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूं मैं। कहती हैं संडे का दिन तो बहुत बोर और काम में गुजरा और लंच में चिकन व्हाइट कढ़ाई है, प्लीज सज्जाद अली का सॉन्ग लगा दें। डील डन हो गई है भाई, लंच तो आपका बड़ा ही जबरदस्त किस्म का है। मेरी भांजी है उसको ना आजकल ये बात कहने की बड़ी आदत हो गई है और उसके साथ रह के मुझे भी अब ना ये बोलने की आदत हो गई। वो हर बात पे जैसे कुछ भी बात होती है ना, वो कहती है मामा ये बड़ा बढ़िया बना है, बढ़िया। तो बिल्कुल भाई, आज मेरे लिसनर्स का लंच बड़ा ही बढ़िया बना है। तो इस बढ़िया से लंच के साथ हम एक बढ़िया से ट्रैक की जाने भी चलते हैं और इस ट्रैक के बाद हम लोग आते हैं वापस। तो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय करें, लुक वर्ल्ड ने हमसे रिक्वेस्ट की है। सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।

0: ओके भाई, तो हमसे एक अदर ट्रैक की रिक्वेस्ट की गई थी, तो हमने कहा चलो जी शामिल कर लेते हैं। ये है लंच टाइम स्पेशल, और इस वक्त लंच के टाइम में ना मूड का अच्छा होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जरा पीसफुल टाइम होता है। तो इस पीसफुल टाइम में आप अपने लंच को एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अपने कोलिग्स के बैठे होते हैं। आज का दिन कैसा गुजरा या कल का दिन कैसा गुजरा, इस पर जिक्र लाजमी होता है। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर भी होती है गुफ्तगु। तो यार ये टाइम तो जरा हैप्पी टाइम होना चाहिए, क्योंकि जब बात लंच की हो रही है तो वो अगर आपके पसंद का हो तो जी मजा ही दोबाला हो जाता है। तो भाई लंच में क्या है, जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें। हमें मैसेज करती हैं जरीन नूर ने भी, हमसे एक अदर ट्रैक की रिक्वेस्ट की है, चलो जी डील डन है, हमसे जरूर शामिल करेंगे। वैसे आज मेरा प्लान था भी इस गाने को शामिल करने का, नाजी हसन के ट्रैक्स, क्योंकि हम शामिल करते ही हैं, और आज मैंने दो ही ट्रैक्स निकाले थे, एक ये वाला भी और एक दूसरा भी। तो मैंने कहा था इसको हम शामिल करेंगे, लेकिन चलो जी अब आपने रिक्वेस्ट कर दी, हमने इसे नोट कर लिया है और हम इसे जल्द ही चलाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास मौजूद है एक अदर ब्रेक, तो चलें जी ब्रेक की जानिब चलते हैं और फिर वापस आकर जानते हैं कि मजीद लोगों के लंच में इस वक्त क्या मौजूद है। तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और बताएं कि आपके लंच में क्या है।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: MCB One करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB One करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: This program is brought to you by RG, Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
4: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM247365।
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

Yes, my friend. So I am back. मैं आ चुकी हूँ वापस और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. भाई आज 15 जून है तो मैंने कहा जरा रोजमर्रा बनाए जाने वाले दिनों पर भी जरा फोकस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं. और भाई आज कोई भी खास दिन नहीं मनाया जा रहा कि जिस पर हम गुफ्तगू करें, लेकिन आज एक दिन मनाया जा रहा है जिस दिन का नाम है नेशनल स्माइल पावर डे. ओके, एंड आई थिंक ये बड़ा अच्छा दिन मनाया जा रहा है वाकई में. कुछ लोगों की हंसी इतनी मतलब मैं कहूंगी कि खूबसूरत होती है, प्यारी होती है. ये कुछ लोगों की हंसी जो है ना वो उनका सब कुछ होता है. लाइक जब वो हंस दें तो सारी चीजें जो है वो बड़ी बेहतर हो जाती हैं. तो यार ये दिन इज नाइस. किसी लोगों की हंसी अच्छा, हंसने के भी बहुत सारे तरीकाकार होते हैं. एक हंसी वो होती है जो आप जैसे खुशी में हंसते हैं, एक हंसी तंजिया हंसी होती है, एक हंसी मतलब एक दिल हंसी की भी ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसका अंदाज लगाया जा सकता है. लेकिन भाई कुछ लोगों की हंसी बहुत जबरदस्त होती है, इसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. और अपनी पर्सनालिटी पर आपको हर रोज काम करना चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं. और आजकल के इस दौर में तो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है ये चीजें कि हम पता करें कि क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है, किस किस तरह की ग्रूमिंग की हमें जरूरत है. चाहे वो हमारे बाल हैं तो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से बनाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि अब आपके ये बाल बहुत टाइम से आपने बना लिए और अब आपको कुछ जरूरत है तब्दीली की, तो बिल्कुल एक अच्छे हेयर कट की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि बहुत टाइम बाद अगर आप कोई मुख्तलिफ सा हेयर कट लेते हैं तो उससे आपकी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आ जाता है भाई. तो थोड़े बहुत चेंज ना करने चाहिए. अक्सर औकात आपको मुख्तलिफ रंग पहने तो वो आप पर बड़ा जचता है. तो मैं कहती हूँ कि जरा सेल्फ ग्रूमिंग पर तवज्जो जरूर देनी चाहिए. और फिर जब कोई करता है आपकी तारीफ तो आपको बड़ी होती है खुशी. तो बिल्कुल भाई ऐसे काम जरूर करें ताकि अपने ऊपर जरा तवज्जो दें, सेल्फ ग्रूमिंग करें, कभी एक अच्छा सा हेयर कट लें, कभी जो है वो कोई मुख्तलिफ कलर को जरूर पहने. क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे ब्लैक ब्लैक पहन रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स कलर्स की भी जरूरत होती है और लाइफ बड़ी कलरफुल है यार. तो उसे अच्छे तरीके से गुजारें और अपना ख्याल रखें. तो भाई मजीद लंचेस के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं. फिलहाल हम चलते हैं जरीन नूर के ट्रैक की जानिब जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एंड देन वी बी राइट बैक.

0: This program is brought to you by Ajvi, Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
1: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाए.
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जस्ट कैश है ना.
3: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए. एंड
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
6: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
7: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
10: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: कुकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED TV लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। एंड
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज़ कैश है ना।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED TV लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। एंड
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. 365.

0: honking.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत।

0: भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: एमसीबी वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम,
8: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC,
9: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
10: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
11: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
1: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
4: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: And
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
13: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
14: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: This program was brought to you by
1: MCB Bank for Life.
0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Cool King.
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
8: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
11: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
12: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
13: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
8: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
9: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
0: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
11: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर अभी जैज कैश डाउनलोड करो पाओ इंस्टेंट लोड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस वो भी बिना किसी रिटेलर के आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना
4: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम
6: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
7: And आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
8: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
9: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
10: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
5: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
7: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
8: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम,
11: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
12: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
13: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
12: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: एंड

0: Stan's number one sound.
1: FM 100.
0: FM 100.
1: Number one on the FM dial.
2: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Cool King.
5: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
4: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
9: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
10: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: This program is brought to you by
11: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
2: and Aji, Hire Mini LED TV Line, और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। एंड
12: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड
13: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: एंड
14: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: एंड

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And Ajhi. Higher Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। एंड
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
4: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
0: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: कूल किंग
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
11: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
13: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: एक दुनी दो, दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
14: एक दुनी दो, दो दुनी चार, दुनी दो, दो दुनी चार।
15: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराब टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
13: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
16: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
7: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: खत्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज है, लिहाजा इस मामले को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करने और जज्बात को भड़काकर अफरा तफरी पैदा करने से गुरेज करें। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation.
4: This is FM 100.
0: Today's best music. FM 100. Your number one.
5: Cool King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
10: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
9: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
11: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना?
7: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: तूफान है।
10: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
11: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
12: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
13: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Cool King.
3: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
7: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi JazzCash download.

0: करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जस्ट कैश है ना।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी।

0: के साथ आज ही अपना नया प्रीमियम 5G हैंडसेट हासिल करें और पेमेंट 12 महीनों के आसान इंस्टॉलमेंट्स में. विजिट योर नियरेस्ट जैज एक्सपीरियंस सेंटर टुडे एंड गेट योर लेटेस्ट स्मार्टफोन. लेट गो विद पोस्टपेड बाय जैज.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी.
4: धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
7: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
7: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए.
7: आइए वेट से आगे का सोचें.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
4: FM 24/7 365
5: 100
6: Evening Drive Time with

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
4: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
7: एंड MCB Bank for life.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے،

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
5: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi Jazz Cash download karo. Pao Instant Load, exclusive offers or discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. Jazz Cash hai na.
0: This program is brought to you by
6: Hire Kannaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: And MCB, bank for life.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
8: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों। ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365. Evening drive time.

0: पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
5: This program is brought to you by
6: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries,
7: and MCB Bank for Life.
8: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
11: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
12: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
13: ہماری ذمہ داری ہے۔
14: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: Like us on Facebook.com/FM247.

जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ इतने प्यार से मोहब्बतों से मैसेज भी पहुंच रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। आने से पहले ही मैसेज पहुंचे हुए होते हैं। आशा जी कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, आप ही का इंतजार आ रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। और आज भी यकीनन मंडे का शो हिट लिखना चाहिए मेरे को, चलो जाना, बड़ी मेहरबानी, बस आप लोगों की दुआएं प्यार चाहिए जब हिट होता, वरना वैसे दूसरे तरीके से हिट हो जाता। चलो भाई साइड पे, बिलावल भाई गिजरी से मैसेज कर रहे हैं, आज भाई आपको सलाम, सुंबल जी को भी सलाम, कादिर भाई, रुबाब जी और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप और दिन कैसे गुजरा? आज अच्छा दिन गुजरा, मौसम भी काफी बेहतर था भाई, लेकिन थोड़ी सफोकेशन है दोस्तों, कुछ बारिश होने का दिल चाह रहा लेकिन हो नहीं रही, उन्होंने कहा मैं कराची नहीं, मैं नहीं हो रही, पूरे सिंध में बारिश हो गई सिवाय कराची की। कराची वालों क्या जुल्म है हम पे यार, ना रोडें सही है ना बारिश हो रही, क्या है? वैसे बारिश हो जाए तो रोड भी खराब है, अजीब ही सूरत हाल हो जाती है, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है वैसे। देखो अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब दे दिया कि बेटा इन हालात में इन रोडों पे बारिश होना सही नहीं है। उम्मे रुबाब आ गई, सलाम अयाज, और सुनने वालों को सलाम, आपका शो बहुत ही सुपर से भी ऊपर आ रहे, नहीं करो नहीं करो ठाकुर नहीं करो, अभी तो स्टार्ट किया भाई, अभी तो बैठे हैं इस हॉट सीट के ऊपर, पहले इसको ठंडा तो होने दो। आपकी तारीफ करने मालूम, अच्छा जी मुझे बस थोड़ा समझने में वो होती, मतलब कह रही हूँ तारीफ करना चाह रही हूँ, आपके जो मैसेज आ जाता ना यही तारीफ है कि आप टाइम निकाल के मुझे मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अय्यूब भाई आ गए भाई, अय्यूब भाई कहाँ हैं आप? अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं नाइस अयाज, सलामत और खुश रहें सरकार, आप भी सरकार, आप भी, तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, उसी तरह से प्यार भरा, बस प्यार से भरे होने चाहिए। फरीन शहजादी भी आ गई, फरीन कैसी हो आप? ठीक हो, खैरियत से? वालेकुम सलाम और सबको सलाम दुआ, शाम की ठंडी हवाओं के साथ आपको वेलकम। मैं क्या कहाँ बैठी हुई हो जहाँ इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं? मुश्क लैला आ गई, मुश्क जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, कह रही हैं कि मिजाज कैसे हैं, लगी है प्यास तो सुनो यार, अच्छा लगता है, चलिए बड़ी मेहरबानी है। और एक सोच भी आ गई उनको, वो कह रहे हैं शो के जो प्रोमोज होते हैं आपकी अपनी आवाज में होना चाहिए, ये भी ठीक है होना चाहिए, लेकिन यार उन्होंने अच्छे बना दिए, मेरे ख्याल से मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता, लगी है प्यास तो सुनो यार, और अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है। साइमा जफर जो कह के चली गई है ना, बस कमाल है, साइमा जफर भी हमारी बहुत अच्छी आरजे, और लगी है प्यास सुनो अयाज, ये उन्हीं की आवाज है भाई, जहां भी रहें खुश रहें, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं, और उनकी आवाज जो है वो हमारे शो में गूंजती रहती है। 9:30 हो गया टाइम, लेकिन उससे पहले संजीदा भी आ गई, संजीदा जी वालेकुम अस्सलाम, मैसेज पढ़ता हूँ मैं, लेकिन पहले जरा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, और इसके अलावा एक और आरजे भी सुन रही है, ब्रेक के बाद आता हूँ और आपको बताता हूँ।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
4: This program is brought to you by
5: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries,
6: and MCB Bank for Life.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
8: Active, yummy, adorable, seven. Seen a guy crush on you. Have you ever asked to know ya? Have you ever asked to know ya? Seen a guy crush on you. Jana, welcome back. Sunray FM 100 aur saath hi saath, jana. Messages kiya, chat space. Text karenge, send karenge 3636. Kadir Baksh Baloch kehne Ayaz bhai. आपको और सब सुनने वालों को सलाम, बिलावल भाई और संजू जी को सॉन्ग डेडिकेट कर, ठीक है भैया, नेक्स्ट गाना उनको मैं डेडिकेट कर देता हूँ। और महाजबीन आ गई, महाजबीन इस्लामाबाद से हमें सुनती हैं। महाजबीन कैसे मिजाज, थोड़ी सी तबीयत इनकी फिर नासाज हो जाती है। महाजबीन प्रॉपर इलाज कराओ, कुछ डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ, क्या है चक्कर, क्यों नहीं ठीक हो रही तुम? और पश्तो जो बैकग्राउंड है ये इनको भी पसंद आ गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई महाजबीन के लिए। मां जमीन को बल्कि दुआओं में याद रखना आपने। और फरीन शहजादी जो है वो भी हमें सुन रही है। फरीन जी, बाजी को बिठा के रखो, शादी का गाना मैंने रखा हुआ क्यू शीट में। भाई 2 महीने तक शादी है, तो हफ्ता हो गया इस बात को भी, तो शादी का एक आध गाना हमारे प्रोग्राम में होगा भाई। अच्छा भाई, आरजे हमें सुन रही है। असमा जी क्या हाल है आपके, ठीक?

0: अच्छा जी, गाना भी डेडिकेट करने को कह दिया है संजीदा जी ने। संजीदा जी बिल्कुल अस्मा के लिए बहुत प्यारा सॉन्ग अस्मा के नाम करने सुन रही है। अस्मा सुन रही है भाई। तो दो लाइनें हैं लेकिन कमाल है यार, ये मुझे बड़ी पसंद है। और क्योंकि गजल वाला सीन भी ऑन कर ही दिया मैंने, तो ये जो ट्रैक है ना, ये संजीदा जी आपकी तरफ से मैं उनको डेडिकेट कर देता हूँ। किनको? अस्मा जी को।
1: जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है, जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं, जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं।

0: attractive,
1: yummy,
0: adorable, zabardast.
2: जनाब वेलकम बैक. क्या जबरदस्त आवाज है इन खातून की. और मैं ढूंढ रहा हूँ पूरी गजल, जिस दिन मिल गई तो पूरा भी प्ले करेंगे इसको, लेकिन ये दो लाइनें ही काफी है मैं तो. अच्छा जनाब, कह रही माशाल्लाह नाइस स्टार्ट ऑफ मंडे, थैंक यू वेरी मच महाजमीन. और गर्मी से कह रही तबीयत डाउन होती जाए. चलो आप उधर गर्मी होगी, यहाँ स्टूडियो ठीक है, बल्कि सर्दी सी लगने लग जाती, फिर एसी बंद करना पड़ता. फरीन क्या कह रही है, छत पर हूँ और क्या ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, शो के साथ साथ चाय पी रही हूँ. वाह कमाल, रमशा आप ही सुन रही है, रमशा आप ही शादी के गाने रखे हुए मैंने आपके लिए, लेकिन फिलहाल जरा गजलों वाला माहौल बना दिया मैंने. एक और गजल जरा सामने नजर आ रही है, और मैं गुलाम अब्बास मेरे बड़े फेवरेट है. माँ जमीन भी सुन रही है इतनी दूर से, तो माँ जमीन आपको मैं डेडिकेट कर देता हूँ ये वाला ट्रैक.

0: best of 90s, 80s, and today's.
1: जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ प्यार से मैसेजेस पहुंच रहे हैं। अच्छा भाई, नौरीन तौसीफ भी आ गई फैसलाबाद से। लो जी, पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये शो सुना जा रहा है, इस्लामाबाद से भी, फैसलाबाद से भी, कराची भी, लाहौर भी सुन रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मैं भी आ गई हूँ फैसलाबाद से। कैसे मिजाज शरीफ है, सदा हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हसीन तरीन समातों को मेरी तरफ से सलाम, ढेर दुआएं। संजीदा बहन आरजे अस्मा, अस्मा जी आप तो हिट हैं भाई, अस्मा जी को बुलाने वाले हैं हम अपने शो में भाई। भाई तैयार हो जाएं आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना लें इनसे, क्या क्या पूछना है आपने। खुसूसी दुआएं, अच्छा सा सॉन्ग भी डेडिकेट कर, ठीक हो गया जनाब। अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे हैं सर फीफा वर्ल्ड कप के बारे बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस खेले जा रहे हैं। हाँ यार, यार वो कभी एक जर्मनी का मैच देख रहा था, उन्होंने तो जबरदस्त भाई 7 गोल कर दिए भैया, 7 गोल इकट्ठे। कंट्री पता नहीं कौन सा था, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बड़े नए नए मुल्क भी आ गए भाई। और सलीम मेमन आ गए, सलाम आयाज भाई आप कैसे हैं, हमारे लिए भी कभी कभी सॉन्ग चला दिया करो, मैं लगा दूंगा भाई, सलीम भाई मैं लगा दूंगा गाना, डोंट वरी। माजमीन आगे कहते, मैं सारे गाने आज माजमीन आपको डेडिकेट कर दूंगा, फिक्र ना करें आप, सारे गाने आपके लिए। अच्छा जनाब, और संजीदा जी ने गाना पसंद कर दिया, ये वाला भी भाई गजलों की क्या कहने। और अस्मा जी गुलाम अब्बास साहब के साथ, अरे क्या कहने, क्या खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर। गुलाम अब्बास यहाँ भी आए थे FM 100 पे अजमल शुभी के शो में, और मेरी भी मुलाकात उनसे हुई, बहुत ही आला आदमी, बहुत ही अच्छा भाई। और अस्मा जी ने थैंक्स अदा कर दिया संजय जी का,

0: अच्छा जनाब अमरीन हमें मैसेज करें, अमरीन क्या हाल है आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं, और क्यू शीट की तारीफ कर रही हैं, कह रही बहुत उम्दा उम्दा, अच्छा जी उम्दा, बड़ी मेहरबानी। असल में पुराने गाने वैसे भी लोगों को अच्छे लगते हैं, पुरानी यादों में लोग चले जाते हैं, और नो डाउट शायरी भी अच्छी होती थी, और म्यूजिक के तो क्या कहने। जरी नूर भी आ गई हैं, ताजा ताजा मैसेज आ गया, सलाम कैसे हैं सबको, सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और ब्रांड न्यू मैसेज एक और पहुंच गया फारूक भाई का, फारूक साहब क्या हाल है, पहली दफा सुन रहा हूँ और मैसेज कर रहा हूँ। अयाज भाई अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि कैसे तारीफ, भाई नहीं नहीं आपने ये मैसेज कर दिया, ये बहुत मत वो अल्फाज ढूंढे आप, बस आप लोग खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, मेरे लिए ही बहुत है। और बहुत खूबसूरत बात कर दी है महाजबीन ने, कह रही हम किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते जब तक हम उससे मिल ना ले, ये बात अच्छी फेस टू फेस, और तभी सही पता लगता है कि भाई कैसा है। लेकिन बंदा पॉजिटिव रहना चाहिए, हम तो हर एक को अच्छा ही समझते हैं, हालांकि यहाँ आते हैं कि बुरे बुरे भी अजीब से कमेंट्स कर रहे थे, हम उनको भी अच्छा समझते हैं कि चलो यार उसने टाइम निकाल के मैसेज तो किया, इतनी तो इम्पोर्टेंस दी उसने, वरना आजकल के दौर में कौन भाई। अच्छा जनाब नौरीन जी बड़ी खुश हो रही है, जो पहली गजल लगाई है फरीदा जी की गजल तो लाजवाब थी, बड़ी मेहरबानी। राज जनाब टाइम चेक और छोटी सी ब्रेक, चार मिनट की, चार मिनट की छोटी होती है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: इट्स 9:45 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स।

0: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स JazzCash ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे JazzCash से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए JazzCash है ना।
1: 100 FM।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी JazzCash डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए JazzCash है ना।
1: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: and MCB Bank for Life।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
9: ये मुफादे आमाल का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
1: Like us on facebook.com/fm247365
10: fm247365
11: active
12: yummy
11: adorable zabardast
12: got a crush on you
11: ye pyaas to suno yaar।

0: जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस बहुत ही प्यार। अमरीन का फिर मैसेज आ गया। अमरीन जी बहुत शुक्रिया, इतना प्यार से आपने मैसेज कर दिया है। आज दिल से ढेरों दुआएं आपके लिए निकलती हैं इस टेंशन वाले माहौल में। 2 घंटे कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता, इतनी सारी दुआएं नहीं चली आए। बहुत शुक्रिया मैम, इतनी आपने रिस्पेक्ट इज्जत दे दी मुझे। वैसे सच बताऊं मुझे भी बहुत मजा आता है, पूरी टाइम में काम करके थक हार के जब मैं यहाँ सीट पे बैठता हूँ सीरियसली मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ आप लोगों से बातचीत करके। गाने वाने तो चलते ही रहते हैं लेकिन इतना प्यार इतनी मोहब्बत मैं आप लोगों से लेके जाता हूँ। सोच है आपकी, माजमीन लिटरली बहुत ही स्वीट है। इनके लिए बस मैं दुआ करता रहता हूँ कि या अल्लाह ये जल्दी से ठीक हो जाए। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हमें सुन रहे होंगे जो जरा तबीयत जिनकी सही नहीं होती, तो मैं उनकी उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं कि वो ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में अक्सर लोग सुन रहे होते हैं। अच्छा, एक तो मरीज होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए होते हैं और कुछ लोग जो उनके ईमानदारी के लिए आए हुए होते हैं या उनको देखने आए हुए होते हैं, वो भी कहीं कमरे में या नीचे, टाइम तो गुजारना है ना भाई, तो अक्सर वो लोग भी मुझे मैसेज करते रहते हैं। तो इन तमाम लोगों की भी हिम्मत हौसले की दाद देनी चाहिए। और भाई यही होती है अपनाइयत और यही होता है प्यार। अच्छा जी, अस्मा जी कह रही है कोई बहुत ही रोमांटिक सा ट्रैक जो है ना, रोमांटिक से मुराद बहुत ही कोई खूबसूरत ट्रैक, वो संजू को डेडिकेट करना है। ओए हो, मुकाबला चल गया भाई पर। लेकिन जरा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको क्योंकि एक शादी का गाना भी मैंने प्ले करना है। रमशा जी सुन रही हैं, 2 महीने बाद शादी है उनकी, तो गाना हमने लगाना है शादी का। फरीन शहजादी बस रेडी हो जाओ, लेकिन पहले टाइम चेक है और ब्रेक है और उसके बाद शादी का गाना। अच्छा जनाब, नाइस सॉन्ग, तेरे बिन नहीं रहना ये जानी, कौन है ये आदमी, कौन है ये, नाम नहीं लिख रहे कुछ। अच्छा जनाब, मधिया हमें मैसेज कर रही है, फर्स्ट टाइम मैसेज किया है। आपकी बातें और सॉन्ग प्रोग्राम की रौनक बढ़ा देती हैं। आए हाय, बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित बहुत सारी दुआएं और तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई आ गए, फोन कब ठीक होगा, भजन फोन को रहने दो। वैसे मैं बताऊं मजा इसमें आ रहा है आजकल, लेकिन जल्दी फोन को भी तरह आ जाए, उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह और फिर बातचीत करेंगे। लेकिन इसमें भी मजा आ रहा है, लोग कह रहे हैं मेजोरिटी यहाँ पे लोग पता क्या कह रहे हैं, बगैर फोन के भी सही लग रहा है बातें और गाने। अच्छा जनाब, जो लोग पहली दफा सुन रहे हैं उन्हें बता दूं मैसेज करने का बहुत सिंपल तरीका, KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। नाचीज को अयास अहमद कहते हैं। टाइम क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ और 2 मिनट की ब्रेक भी। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शादी का एक खूबसूरत सा ट्रैक वो प्ले करना है।
1: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
3: and MCB Bank for Life।
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
3: FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
5: एक्टिव
6: यमी
5: जबरदस्त
6: प्यार, तो सुनो यार।

0: क्या बात है जनाब, मैडम जी की आवाज सबर कमाल। और माँ जमीन, गाना आपने अच्छा याद दिलाया। कहने भी जाने वाली चीज का गम क्या करें, आए हाय क्या जबरदस्त ट्रैक। बिल्कुल आज के क्यू शीट में तो नहीं है मेरे पास, लेकिन नेक्स्ट जब मैं क्यू शीट बनाऊंगा तो ख्याल रखूंगा मैं। ठीक हो गया। और वो कहनी, वैसे आज के तमाम सॉन्ग्स ही सिलेक्शन बेस्ट है। बहुत शुक्रिया माजमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा असगर भाई ने फोन कर दिया मुझे फौरन, कह रहे भाई समझाते समझाते ये हाल हो जाता था, बाद में कहते थे तुम खुद ही कर लो यार। वैसे ये होता है, वैसे ये मैं बताऊं थोड़े डायरेक्टरों में भी फरानियत होती है असगर भाई, ये मैं आपको बता दूं। बेचारा हीरो, इतने लोग खड़े हैं, लगने में आसान लगता है लेकिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर को भी दाद देनी पड़ी। अजीज हम्माद कह रहे हैं सलाम, शो बहुत अच्छा कर रहे हो, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, और अच्छा अजीज हम्माद, अबे अयाज अहमद लिखना चाह रहा है मैं, क्या है टिकटॉकर फैसल अरब फैसल अरब, नाम अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो माफी सर। चले भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो भी सुन रहे हैं। और गयासुद्दीन बलबन ने पूरी स्टोरी याद करी, कह रहे दो तीन दफा सुनी, एक दफा नहीं दो तीन दफा। और कह रहे हैं भाई एक दफा रंगीला साहब, इरफान खोसट और उमर शरीफ साहब की शूटिंग हुई थी वहाँ, वहाँ मुझे याद आया बिल्कुल। और एक वो गाना भी वहीं शूट हुआ था रात में, भाई खाना वाना खा के डिनर विनर करके ऐसे हम बाहर वॉक करने निकल जाते थे सीबीयू, तो देखा तो हसन जहांगीर भाई शादी ना करना यारो। अगर आप वो वीडियो देखें सीबीयू याद आ जाएगा, सीबीयू में शूटिंग हुई थी सारी। इरफान सलीम भी आ गए, इरफान कैसे हो मेरे भाई, ठीक हो? अच्छा जी, इन्होंने भी नया नूर का गाना लिख दिया, सरकार नहीं कह रहे सर, क्यू शीट बनी हुई है ना। अच्छा भी अब डेडिकेशन क्या है, एक मिनट की ब्रेक है उसके बाद बताता हूँ कि क्या डेडिकेशन है और किसको डेडिकेट करना है।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर, अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 24/7 365 वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा भी अस्मा हुसैन कह रही है कि मेरी तरफ से ना एक जबरदस्त ट्रैक जो है वो संजीदा जी को डेडिकेट कर दें। तो संजीदा जी तुसी रेडी हो जाओ, एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक आपको डेडिकेट करने जाने अस्मा की जानिब से, और वो है काई से।

हाँ जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंचना शुरू हो गए हैं 3636 पर. नादिया मलिक जनाब वापस पहुंच गई हैं, लेकिन एंजॉय करके गई हैं भाई. वैसे बाकी यार पाकिस्तान ऐसा भी नहीं, जो पाकिस्तान आते हैं बाकी एंजॉय करते हैं, खास तौर पे इस्लामाबाद वाली साइड. और आप जरा गर्मियों में नारान कागान ऊपर पहुंच जाएं तो बहुत ही ज्यादा. अच्छा भाई, और असमा जी ने थैंक्स कह दिया, मोस्ट वेलकम जनाब. और संजीदा जी भी, क्या बात है, जरा नए नए स्टाइल से जरा चेंज. मैं कहता रहता हूँ ना, तब्दीली बहुत जरूरी है. सलाम, आपका शो बहुत अच्छा होता है. आज भाई लेट नाइट शो क्या करें सरकार, मैं क्या फैसल भाई, मैं लेट नाइट नहीं कर सकता. रमजान में है कि चलो जरा छुट्टियां मुटियां होती हैं, जरा कुछ माहौल होता है जरा फेस्टिविटी का, तो वो हो जाता है. लेकिन आम दिनों में बड़ा मुश्किल है लेट नाइट शोज करना.

भाई जनाब और गया सुदीन बलबन को, इसलिए मैंने ये गाना डेडिकेट किया, एक बाल भी सर पे नहीं है और लट उलझी। तो गयास भाई पसंद आया आपको, बड़ी मेहरबानी। लेकिन आप पे ही मुझे पता नहीं क्यों आपका ख्याल आ रहा था कि इस गंज के ऊपर ये गाना कैसे लगेगा। जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब एक और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मेरा आजकल बड़ा फेवरेट है ये गाना, तो एंजॉय करते हैं और सुनते हैं। मैसेज करते हैं 3636 पर।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
4: FM 24/7 365
5: Active, yummy, adorable, seven. Say that guy, crush on you. Yeah, yeah, yeah.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100, क्या गाना है जबरदस्त। अच्छा एक ये भी वर्जन है और एक मैडम जी ने भी गाया था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा जरा सा सुनाता हूँ।

राज जनाब और असगर साहब की मोहब्बत हमारे साथ है और फोन मैसेज किसी न किसी तरीके से वो बता रहे हैं कि भाई मैं फुल टाइम शो सुन रहा हूँ और आई होप कि आपको ये गजल पसंद आई होगी और ये गजल काफी सारे लोगों को पसंद आ गई भाई। फैसलाबाद में हमें सुन रही है नौरीन तौसीफ और वो कह रही है कि भाई क्या जबरदस्त डिनर भी कर रही है साथ और शो भी इंजॉय कर रही है, लाजवाब इंतखाब, क्या बात है। मैं अभी इसी गजल के बारे में सोच रही थी, पक्की बात है, क्या बात है फिर तो। और महजबीन भी जो है ना हमें इस्लामाबाद में सुन रही है और खुश हो रही है भैया, वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। संजीदा जी तो शायर का नाम भी अदा जाफरी की दिल छूती गजल है। अच्छा फोटो पे ये बात है वैसे कि हमारी नॉलेज में भी इजाफा करती रहती है संजीदा भाई। ईद के बाद पंजाब गया था, आ जाया हूं। कौन आया भाई, नाम तो लिखो भाई, कौन आ रहा है या कौन आ जा रहा है भाई। एस भट्टी आ गया, अयाज भाई क्या हाल है, मेरे ख्याल से एस भट्टी होंगे, वेलकम अयाज भाई ईद पे पंजाब। अच्छा ये दिखाना आ गया, ठीक हो गया सरकार, भट्टी साहब इंजॉय किया कि नहीं। और अस्मा जी भी इंजॉय कर रही है और फुल टाइम तारीफें कह रही, प्लेलिस्ट जबरदस्त, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अस्मा। और एक आरजे की तरफ से अप्रिसिएशन ना, ये बड़ी बात होती है वैसे। अच्छा जनाब और एक और ट्रैक की जाने बढ़ते हैं अब और शामिल करेंगे ये खूबसूरत सा गाना।

0: Monday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: हाँ जी, वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और गाने इतने सारे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतें साथ साथ चल रही हैं और क्यू शीट वाकई आज पसंद आती लग रही है, सारे गाने पसंद आ रहे हैं। संजीदा कह रही है इसकी शायरी समझ आती, चले जनाब कुछ तो समझ आ रहा है, वरना तो अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता। अरे अस्मा जी तो फुल एक्सरसाइज ही हो जाएगी, अच्छा डांस करते रहो भाई, एंजॉय करें आप। और अचानक एक दुखी गाना भी याद आ गया, दुखी तो नहीं है लेकिन जरा ऐसा रौनक वाला भी नहीं है, और मेहंदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज, हाय हाय हाय, वैसे है कुछ ना कुछ बात है इस गाने में भी, चेक करें जरा।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: We'll be right back after this commercial break.
3: तमाम सरकारी गाड़ियों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
6: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7/365
3: FM 24/7/365
4: प्यास तो सुनो याद
5: जना वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर और वेरी नाइस। मैं ते मेरा जानी आपको क्या कहने, आपके अच्छे आप हमें बहुत अजीज हो और मैं तेनू समझावा। अब क्या हो गया, सारे गाने एक साथ लिख दिए तुमने? कौन, ये तो नाम ही नहीं लिखते ना, तो पता नहीं चल रहा। वैसे मुझे अंदाजा है कि किसने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं ले रहा। सब जो भी है बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। नौरीन तौसीफ, वाह वाह वाह, डिनर कह रही, लाजवाब डिनर हो गया। मेहंदी हसन साहब की आवाज, मेहंदी हसन साहब की आवाज के क्या कहने। नूर जहां, मेहंदी हसन तो फिर हरदिल अजीज। और अब बात करेंगे हम अहमद रुश्दी साहब की, और अहमद रुश्दी साहब का जिक्र करता हूं तो फुप्पा याद आया। फुप्पा बड़े दिनों से बात भी नहीं हुई आपसे यार। फुप्पा अगर सुन रहे हो ना, तो ये गाना मैं आपको डेडिकेट करता हूं, और वो है कैसे।

क्या बात है जनाब, नहीं यार नूर तो कुछ भी गाने तो अच्छा लगता है। अच्छा भी टाइम जो है वो कह रहे टाटा बाय बाय करें, और मुश्क जी बहुत शुक्रिया, कह रही गुड शो, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। और जाते जाते यार एक थोड़ा सा ये भी सुनाता जाऊं,

जनाब इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसके बाद नदीम अख्तर दी ग्रेट तशरीफ ला रहे हैं और जबरदस्त शो लेके आएंगे। अमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, इतनी सारा प्यार, इतनी तारीफ कर दी शो की, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुबाब को सलाम दे दिया भाई, और भाई जी अयाज अहमद को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा भमाना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम।
2: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: Music Twister.
7: Twist the music.
6: With any soil.
8: This is your music.
9: O chhod pe karanu kuch, suno mere fikron mein likhe hue ke

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan. Mera naam hai Nadeem Akhtar aur pyar se aap log mujhe kehte ho NS Zone. Music Twister mein main hoon aapke saath.
1: Habibi.
0: आपका और मेरा साथ है जनाब, एक बजे तक और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला तेगुल्ला। वैसे हल्ला गुल्ला तो जारी हो सारी था, अयाज साहब का शो था और अयाज का शो हो और हल्ला गुल्ला ना हो
1: ऐसा हो नहीं सकता।
0: हमारा हल्ला गुल्ला रहेगा जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक आप कर सकेंगे इस शो में शामिल होने के लिए मैसेजेस 3636 पर अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपने प्यारे से नाम प्यारे से मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करें तो भी मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल करता हूं फ्लोट, आप देते हैं उसका जवाब,
1: मगर
0: उससे पहले करता हूं मैं आप लोगों को वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए गाना चलाना था, पहले से चल रहा है। और भाई क्यों चल रहा है भाई तू, तो गाना सुनाते हैं वार्म अप करने के लिए बेहतरीन सा एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको एक बार फिर। मैसेजेस आपके पहले से बहुत सारे आ चुके हैं भाइयों, बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। और सबसे पहले फीता काटा है हमारे यूसुफ भाई ने पापुस, और कह रहे हैं कि तमाम सुनने वालों को सलाम, FM100 की तमाम फैमिली को सलाम, खुसूसी तौर पर हमारी पैरसी आंटी चाची अरुषा गुलबानो, तमाम डॉक्टर इमरान भाई, खिताब गुल्लाल गुफरान भाई और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, मानूर आ गई हैं भाई बाप, आपको अयूब आफरीदी भाई को, अयूब आफरीदी भाई, अयाज भाई, बादराबाद वाले भाई, मोश्क और सब सुनने वालों को मेरे दोनों हाथों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दो दफा मैसेज कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात। नदीम भाई कैसे हैं आप और तमाम सुनने वालों को सलाम। नदीम भाई ये गाना सुना दो भाई, ये जो मिस्टर गुलाम सरवर साहब, पहले इसको मैं हिज्जे कर रहा हूं तो अजीब सा लफ्ज बन रहा है। ये गाना कौन सा है भाई, जरा इसके स्पेलिंग सही कीजिए। गुलाम सरवर साहब, यकीन मानिए मैं कुछ और समझ रहा हूं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। महानूर कह रही बाब OST की फरमाइश कर दी है, फरमाइशें पूरी नहीं हो सकती अभी, खैर कोशिश करेंगे। खुशबू वाला मैसेज आ गया भाई, परफ्यूम चौक से। अस्सलाम वालेकुम डैशिंग, क्या हाल है, आज मौसम बेहतर था। अच्छा, बारिश से लड़ाई है कराची से इसलिए नहीं हो रही, बारिश की लड़ाई है भाई कराची से। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, और डैशिंग बात पूछनी, मैं तो बस बात करती हूँ, लड़ाई अपने आप हो जाती है। वाह वाह वाह वाह, कितनी अच्छी है आप, मासूम बच्चा, जरा रोशनी फेंके इस पर। रोशनी क्या फेंकनी है, सब समझ में अभी आ रहा है, ऐसा क्यों, कोई फाइट है किसी में, कोई फॉल्ट है किसी में, किसी में, हाँ जाहिर है सब में फॉल्ट है आप, माँ सिवाय आपके, यानी कि समझ रही है ना आप, ऐसी लड़ाई हो जाती है। समी भाई कहाँ है, शादी करीब आती जा रही है, ये उदास होते जा रहे हैं। ये बात का पैटर्न ने लिखा है, पैरेड है, जब बर्तन भी धोने होंगे, और चाय पीने के साथ साथ अगर फोन पर बात करो तो ऐसा महसूस होता है कि मैं 3-4 फैक्ट्रियों की मालिका हूँ। वो तो जब कप धोने के लिए उठती हूँ तो होश आता है, अम्मा की आवाज आती है, कप तोड़ दिया, और मैं इसलिए पीती रही कि एक कोल्ड ड्रिंक का नाम लिया है, पीने के बाद जमीन पर पैर मारो तो एनर्जी का झटका। अच्छा, एनर्जी वाला ड्रिंक जो होता है, लेकिन मैंने 3 बोतलें ही पी थी, अल्लाह माफ करे। अच्छा मैं एक बात बताऊं मोश्क आपको, ये जो एनर्जी ड्रिंक है इससे इज्तनाब बढ़ते हैं, यानी कि मद पिए तो अच्छा है, और अगर बहुत ही मजबूरी है तो कम से कम पिए, ये मेरा मशवरा। और कह रही है स्टेशन पे लिखा था अनजान आदमी से कुछ ना ले, क्यों भाई, मैंने टिकट नहीं ली, अब थाने में हूँ। जी अच्छी अच्छी बात है, हमें तो बर्तनों ने लूटा, सोशल मीडिया में कहाँ दम था, मेरे हाथ उस बेसन में जा डूबा जहाँ पानी कम था। वाह वाह वाह वाह वाह, इसके और भी बड़े जबरदस्त मजेदार किस्म के चुटकुले, वो भी थोड़ी देर में शामिल करेंगे हम, बल्कि शामिल कर देते हैं, थोड़े से ही रह गए। कसम खुदा दी ऐसी घर नहीं जाना अम्मा से पिटेगा, सॉन्ग पर कह रही हूँ, ऐसी नहीं घर जाना अम्मा से पिटूंगा। लोग मेरे साथ बहुत ड्रामे करते हैं, उन पागलों को ये नहीं पता, पगली चुड़ैल भूत बड़ी फिल्म है। अच्छा ये लगता है कि मुश्का ना फुल टाइम कजन वजन के साथ जो है ना फड्डा वड्डा हुआ है। मैसेजेस की जानिब जाएंगे जनाब, और मगर इस ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
5: FM 24/7 365
6: Music Twister. The music.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। भाई मुश्किल मैसेजेस चल रहे थे और आपके मैसेजेस भी आ रहे थे, तो क्यों ना मुश्क को एक गाना डेडिकेट किया जाए। उसकी वजह यह है कि इनके जो मैसेजेस थे फुल फटे वटे वाले थे, उनके फुल फटे हुए हैं, तो मुश्क की तरफ से जिनके साथ फटे हुए हैं इनके, उनको मैसेज है मुश्क का ये गाना डेडिकेट करके।

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये अल्लाह गुल्ला जारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, हमने मोबाइल की राइट मैसेज में जाइए कि चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। और ये मैसेज कहां गए जनाब, ये रहे। अमीन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, शो वीआईबी ऑसम, बिंदास बोले तो जगास। FM 100 की स्वीट फैमिली को अमीन का सलाम, उमर रुबाब को डेडिकेट कर दें सॉन्ग, कर देंगे जनाब। और नदीम भाई फिर ये गाना राहत फतेह अली का, अच्छा भाई ये मुझे लग रहा है कि राज साहब ने इंडिया में जाके गाया है। गुलाम सरवर साहब अपना नाम लिखा करें हर मैसेज में, ये तो अभी हमने अंदाजा लगा लिया कि आपका ही मैसेज है। और दूसरा ये कि डेडिकेशन या सिंगर का नाम लिख दें, उनका कोई भी गाना चला देंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना। सलीम सलाम कैसे हैं वालिद साहब, संजू और सबको सलाम, ये हैं हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर, कैसी हो जरीन नूर। और भाई आपको मेरा सलाम, सब सुनने वालों को भी सलाम। गाने की फरमाइश कर दी है मिर्जा साहब ने, मिर्जा नईम बेगलौरी, आज फरमाइशें बहुत आ रही हैं भाई, क्या बात है भाई, फुल टाइम फरमाइशी प्रोग्राम चल रही है भाई। संजू के नाम आप अपनी आवाज में सॉन्ग सुना रहे हैं
1: जरीनूर, मेरी आवाज ओके
0: भाई संजू से भी पूछेंगे ना कि संजू को आवाज भाई समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, पता चल ले किसकी आवाज में सुना दिया बाबू। चुड़ैल इतनी प्यारी बातें करती है पता नहीं था, उसने अभी चुड़ैल के हवाले से कुछ बात भी की थी, अभी अपने मैसेज में लिखा था, लोग मेरे साथ भूत ड्रामे करते हैं, बहुत ड्रामे करते हैं, ये बहुत भूत लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा था भूत लिखा है लेकिन बहुत है। इन पागलों को ये नहीं पता कि पगली चुड़ैल बहुत बड़ी फिल्म है। तो चुड़ैल सोलर वाली बिजली भरी है सच्ची मुच्ची सोलर वाली बिजली कैसी होगी सोच रहा हूं मैं, वैसे उससे तो हर चीज चल जाती है। और कह रही है FIR कट जाएगी जो छूलेगा, बेटे FIR की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, करंट से ही मर जाएगा। और कादर बख्श बलोच साहब आ गए हैं और कहते हैं अरे भाई आपको और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। बलावल भाई आपके शो में मैसेज क्यों नहीं करता है, ये बलावल भाई कौन है भाई, एक बलावल साहब हैं और एक बलावल भाई आपके वाले होंगे मेरे। बलावल भाई मैसेज क्यों नहीं करते भाई, कादर बख्श साहब पूछ रहे हैं, बताइएगा जरूर बलावल साहब। और ये बिलावल होगा या बलावल होगा, बलावल बलावल। अमीन कह रहे हैं कि एक पगली थी दीवानी सी, लहू पीने पे वो मरती थी, जब भी आती थी वो छुप छुप के छुपा के गार्डन घुमा के सांसों सुनसान गलियों से गुजरा करती, लंबे दरवाजे लंबे डरावने नाखूनों से शिकार किया करती थी, जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी चार्ली, बनाया चुड़ैल सिस्टर का वार कैसा होता है, भैया चार्ली भैया चुड़ैल सिस्टर का वार कैसा होता है, और मैं सिर्फ इतना ही कह पाता था अल्लाह बचाए। मुंह धोकर क्यों आती हो बहना सलाम सिस्टर डोंट माइंड पगली ये भाई अमीन चार्ली का यानी कि समझ नहीं है ना मुश कह रही है बाबू को थैंक्स कह दें और हाय नदीम कैसे हैं आप मेहरीन बलोच दादू से मेहरीन कैसी हो ठीक ठाक हो और शो बहुत अच्छा है मैं शौक से सुनती हूँ प्लीज भाई एक सिंधी सॉन्ग हो जाए फौजिया छोमरों का मेरी बहन इतनी दूर से सुनती हो दादू से सुनती हो तो आपके मैं वैसे ही भी फरमाइश पूरी करता हूँ और नदीम रोरा तासु सेंग मुम मुम नूर नूर नूरम पखाई यो पख्तू संदरा चलाएगी कना चलाएगी बिल्कुल जी दासियो काना यार हमने पढ़ लिया यार हम ओके ठीक है भाईजान और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे और आपने जो फरमाइश की है हम वो भी चलाएंगे और उमिर रुबाब कह रही हैं हाय अलजी नदीम आपको और सब सुनने वालों को सलाम अमीन को भी सलाम मन खूबी हाय जबरदस्त मन खूबस्ती होना चाहिए जी यानी कि समझ रही है ना पगली तो सिर्फ पगले की अमीन चाचू पार्क में अकेले मिले अमीन चाचू अमीन चाचू पार्क में अकेले मिलो जरा पगली चुड़ैल से फिर पता चलेगा अच्छा जी हमारे प्यारे से गुज्जर खान तो आ गए ना जनाब मिर्जा शुजा साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई तमाम सुनने वालों को आदाब तस्लीमात लाला आज दस सवाल किए सवाल अच्छा हाथ भी खड़ा किया सवाल नंबर एक सवाल नंबर दो सवाल नंबर तीन चले अभी मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूँ आज पहला बंदा जिसने पूछ लिया सवाल किया है ओहो शनाया भी आ गई है कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैंने सुने हो कैसे हैं आप और आपके बाबूजी कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है FM 100 की फैमिली को शनाया का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और कह रही प्लीज रीड माय मैसेज और इधर भी फरमाइश आ गई ओके मुझे लिखना पड़ेगा सारी फरमाइशें आपको एक फरंगी गाना सुनाता हूँ यानी कि अंग्रेजी लेकिन अभी सुना ही नहीं सकते ब्रेक के बाद सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आपकी फरमाइशें नोट की जाएंगी जो जो निकाल सकेंगे वो फरमाइशें निकाल के हम चला देंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अली मोदीन यूसुफजई साहब आपका मैसेज हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब तो चलते हैं एक ब्रेक की जानिब

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे,
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365. Welcome back, kahenge sunyo. और लेकर फौरन चलते हैं आपको एक अदद गाने की जानिब। ये फरंगी गाना है यानी कि अंग्रेजी गाना है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। लो फड़ो

वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको शेप ऑफ यू एट शरीन शरीन और आई होप के जो इंग्लिश सॉन्ग लवर हैं उनको पसंद आया होगा. मैसेजेस कर रहे हैं आपके एचआई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर और मैसेजेस आपके मेरे सामने मौजूद हैं और मैसेजेस की जानब चलते हैं. कहाँ गए मैसेज? ये रहे मैसेज, ये हो गए थे दोनों. और बाबू नाइस पश्तो, क्या बात है आपकी. हाय अल्लाह जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. ओके पख्तो था, मैंने पख्तो से ही बोला है. पश्तो तो हमको थोड़ा थोड़ा आते अयुब आप प्रीति भाई ने हमको सिखाया थोड़ा सा. उन्होंने बोला यार पश्तो सीखो यार. मैंने बोला हम सीखेगा क्यों, कैसा बात करते. और रुखसारे आंचल के शोरों की कसम, उल्फत का नजारा किसी दोष से कम ना था. खुशबू तेरे आने की किसी कली की मुस्कुराने से कम ना थी. मैं जानता हूं कि तुम गैर हो लेकिन ना जाने क्यों तुझ में अपनायत सी महसूस होती है. यूं तो जहां में और भी हसीं लोग होंगे लेकिन मेरी जाना तुम सा तो शायद कोई भी ना हो. हाय हाय हाय हाय अमीन भाई क्या हो गया तुनु? ये एक बीमारी है जो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको लग गई है. खैर अमीन भाई ने बहुत अच्छा एक माहौल खींचा है. हैं जी, जी हैं जी. और उमर रुबाब है जी, माशाल्लाह आपका शो सुपर सुपर से भी ऊपर होता है जिगर. शुमखौल खूबी, यानी आप बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच उमर रुबाब, आपको हम गाना डेडिकेट करेंगे. और अब्बासी अलबेला, अलबेला भाई कितने रह गया से यार, यार इतने दिनों से गायब. नदीम भाई जानू बर्गर वाला का कोई एड्रेस बताओ, मिलेंगे उसकी महफिल में. कोई रोड तो बताओ भाई. गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, मुमताज मंजिल पर जाइए. मुमताज मंजिल स्टॉप है, वहां पर जाकर किसी से भी पूछे जानू बर्गर वाला किधर. जानू बहुत मशहूर है जानू. तो वैसे अलबेला साहब तुसी दरअसल तुसी किधर गायब थे. और शनाए कह रही है कि अंग्रेजी गाना तर्जुमे के साथ चलाइएगा. आई एम वेरी वीक इन अंग्रेजी. और कोई गाल ही नहीं, आइंदा से मैं आपको पूरा तर्जुमा करके हो सकता है गाने के दरमियान में सुनाऊं, ये वादा रहा. बड़े बड़े लोग आ गए जनाब, संजू भी आ गई है. संजू क्या किए रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नदीम आफियत की अनगिनत दुआएं और खुशामदीद. शुरू से सुन रही हूँ, माशाल्लाह से बड़ा गुनगुनाता मुस्कुराता प्रोग्राम हो रहा है. वाजीवा फुलझड़ी ने आपके शो में तो कुमकुमों से रोशन कर दिया है बेशक. और मेरी बहुत ही प्यारी जरीन नूर और काबिल एहतराम नौरीन महना के लिए टोकरे भरकर प्यार खुशबू वाली दुआएं जिससे ये सब महकते रहें. वाह वाह वाह वाह क्या मैसेज है, वाह वाह वाह. वैसे संजू आपके मैसेजेस में वो खनखनाहट कहां गई जो मुझे कोई ना कोई एक ऐसा जुमला जरूर मिलता था, वाह वाह वाह वाह, जिस पर मैं करता था उर्दू, पढ़ने में मजा आता है. आपकी भेजी हुई मैसेजेस जो हैं उनके हवाले से कह रहा हूं. और वाकई में जो है एक और हमारी प्यारी सी बहन है फैसलाबाद में. फैसलाबाद में लग रहा है बारिश बहुत हो रही है और वो सो रही है. मेरी एक बहन है वहां पर जिदा नाम है नौरीन तौसीफ, प्यारी सी लिसनर. एंड अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वाजिब उल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम. प्लीज नूर जहान या सज्जाद अली की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिएगा. एन गैन फे काफला मीम नून वाव हे हमजा छोटी बड़ी नवाजिश होगी. और कवि उम्मीद है कि आप मुझ बंदा नाचीज को मायूस नहीं करेंगे. पेशगी शुक्रिया शुक्रिया.
خداب گلالا نسیم قریشی سمی شیخ عمران ریاض ایوب آفریدی اور آپ کے واجب الاحترام والد محترم کی خدمت اقدس میں میرا عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے. ہر لمحات واگو نیک خواہشات کے ساتھ علیم الدین یوسف زئی صاحب ایف بی ایریا کراچی 15/6/2026. بھائی بہت بڑھیا, ایسا لگتا ہے خط پڑھ رہا ہوں. کیا زبردست تحریر کرتے ہیں آپ, لیکن کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے فل ٹائم, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں ہماری نورین بہنا بھی آ گئی ہے. ارے نورین بہنا اس طرح نہیں چلے گا. ہاں میں بتا رہا ہوں, اس سے یہ گناہ ہے بہت بڑا یہ کہ آم کی تصویر بھیج دو, آم نہ بھیجو. یعنی کہ میں نے میسج کوئی نہیں پڑھا بھی. السلام علیکم ندیم بھائی, کیسے مزاج ہیں؟ ڈھیرو سلامتی کی دعائیں, تمام حسین سماعتوں کو بھی سلام اور ڈھیرو دعائیں, اور آپ کے لیے انور اٹول گفٹ مل جائے تو بتا دیجئے گا. ندیم بھائی یہ واقعی میں بھیجے ہیں یا صرف تصویر دکھائی ہے؟ یہ عام بہت بڑی جرم, بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کو اس طرح تصویر دکھا دیں. میں منہ میں پانی بھی آ گیا. اور کہیں کہ جی عام کہ عام اور گٹلیوں کے دام, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ. حبیبی ٹائم بڑے تیزی سے گزرا, میں بھی گانا چلانا چلا تھا, چلے چھوٹا والا گانا چلا دیتا ہوں لیکن مزہ نہیں آئے گا. یہ نہیں رہے بھائی, بریک کے بعد چلا دیں گے. شنایا کہہ رہی ہیں آج کی گہری بات, کتنی گہری ہے پہلے یہ بتاؤ.

0: कितने फिट गहरी है, जमीन के अंदर है या जमीन के बाहर है। अच्छा जी, वो गहरी बात यह है कि हर वो एहसास जिसे आप अपने अंदर मख्फी रखते हैं वो आपकी सेहत का कुछ हिस्सा खा जाता है। मेरा बच्चा तू कितना बड़ा हो गया, मतलब कितना खा लिया तुम्हें उसने वो एहसास ने कितने किलो वजन कम हो चुका है, 100 नहीं। वैसे बात सही है। और संजीदा बाजी अरूसा कायनात को सलाम। अच्छा, इसमें एक वर्ड है ऐसा उर्दू का बेहतरीन कि जिसके मायने हमें पता होने चाहिए। क्या बात है गुफरान भाई, यार बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपकी रीले वीले सही चल रही हैं। गुफरान भाई जो है ना आजकल फुल टाइम हॉट, इनकी जो है ना यूट्यूब पर चैनल है ना आपका भाई, वो क्रॉस कर गया मुझे, ऐसा क्रॉस कर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। किस नाम से?
1: गुफरान
0: 2.0 है, जीरो है, जीरो ओ कहलाता है,
1: वो
0: जीरो ओ बोले हाँ फिर कह रहे गुफरान 2.0 के नाम से इनका चैनल है। हाँ, सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा कि करें सबको, मैं बोलूंगा ही नहीं कि सबको सब्सक्राइब करें, और क्या लाइक भी करते हैं
1: लोग
0: और बेल भी बजाते हैं,
1: बजा देंगे अच्छा,
0: बस बजाएंगे भाई सब बजाओ। देखिए पहले बेल का बोल दिया, वो बचाने का बोला है। दरवाजे से कोई नहीं आएगा भाई, बेल बजाते रहेंगे आप, तो लिहाजा ये बेल बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बजाएंगे तो अच्छी बात है। और नालो नाल अगर आप, अच्छा जी बहुत गहरी बात, इंसान डूब जाए। अच्छा मैं इसके शनाया के एक बहुत ही प्यारे से मैसेज में एक लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा मिला है, मगफी खे खे मगफी, इसके मायने बताइए जरा मुझे। अच्छा पूरा जुमला पढ़ता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर आपने मगफी के मायने बताने। हर वो एहसास जिसे आप अपने अंदर मगफी रखते हैं वो आपकी सेहत का कुछ हिस्सा खा जाता है। तो बताएं इसका मायने क्या है। संजीदा बाजी अरूसा कायनात को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सोच रहो अभी बेल, देखो कितनी बेले बजी हैं। कितनी बजी हैं जरा देखिए जरा गुफरान भाई, अभी वो शीशे की उस तरफ है उनकी आवाज सुनी आएगी। गुफरान 2.0 आज से आपका नाम ही ये रख देंगे हम, गुफरान 2.0, यानी कि समझ रहे हैं ना आप गुफरान भाई। तो हमारे शो भी भाई भी आए हुए हैं और वो सिर्फ रीले देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सफेद शर्ट दे दी, देखी है मैंने, लाइनें लगी हुई है उस पर। शोभी भाई ने फुल टाइम कंगा, वो हो शोभी भाई आज लाइव जाएंगे मेरा ख्याल है, पप्पू लग रहे हैं बहुत प्यारे। इसी बात पर जाएंगे ब्रेक की जानिब।
2: This program is brought to you by AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम। FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM247365।
0: वेलकम बैक, आएंगे सुने हो आप सबको भाई। हमारी प्यारी सी बहना शनाया ने एक फरमाइश की थी कि शहजाद रॉय का गाना सुनाया जाए, तो शहजाद रॉय का गाना एलो फड़ो।

और वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको दलता कदम खेदा जिन्हें दलता कदम खेदा देखूं क्या। अच्छा जनाब मैसेज तो आपकी आ ही रहे हैं मगर अभी हम कहां जाएंगे जनाब आपके मैसेजेस की जाने भी जाएंगे। फरमाइश है आपकी है मैं गाता हूँ भाई गुपरान भाई का फरमाइश आ गया यार बाद में प्ले भी करूँ। ओके यार वो कह रहा है आपका आवाज भी नहीं यार आपका अबू की आवाज में सुनना है दोनों की आवाज में चलो ठीक। और जनाब गुफरान भाई का मैसेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैसेज का जानिब जाता है और देखते हैं बासी भाई आगे भाई लेकिन उससे पहले हमारे दूसरे मैसेजेस भी हैं। अच्छा जी महानूर गरीब बाबू हाँ ये बहनों के हवाले से इनका मैसेज हुआ था लास्ट। और संजीदा जी आपको मेरा सलाम मैंने आज आयाज के शो में मजाक में कहा कि आप नदीम के शो में भी आया करें आपसे माजरत चाहता हूँ। संजीदा जी जरा इस पर रोशनी डालेंगी आप प्लीज रोशनी डालें।

0: जिने दिल थके दम के अमीन करे वाह वाह सो स्वीट संजू बहना ब्यूटीफुल गजल नाइस अमीन भाई खुश हुए और माजी अधूरी मोहब्बत याद दिला दी संजू सिस्टर और मुझे भी क्या कर दिया भाई आपको संजीदा कर दिया आंखें नम कर दी वाह वाह वाह वाह वा। सुनियो मैं ऐसा दामाद नहीं हूं और हम क्या बेगमात को टॉर्चर करेंगे आजकल तो बेगमात हमें टॉर्चर कर रही है क्या ख्याल है आपका सुनियो बिल्कुल आपका ख्याल दुरुस्त है उफरान भाई आप भी मेरी इस बात पर रोशनी डालें फिलहाल तो वो गुफरान 2.0 को सब्सक्राइब करेंगे तो रोशनी डालेंगे उन्होंने कहा है फौरन से पेशतर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद वो कह रहे हैं तभी रोशनी डालूंगा ज्यादा फ्री नहीं हूं कह रहे आप मसरूफ रहे और अस्सलाम वालेकुम आयशा मेमन आ गई हैं मेरा नंबर सलीम मेमन का लिखो क्या लिखना चाह रहे हो और आयशा मेमन आ गई मेरी प्यारी सी बहन कह रही है इरफान की कजन बिल्कुल पहचान ली आयशा मैंने और सजाद अली का सॉन्ग मेमन फैमिली को जल्दी से तो आयशा मेरा बच्चा कुछ देर में चलेगा दो गानों के बाद यानी कि समझ रहे ना अरे समी आ गया क्या कहाँ आया ये तो मसरूफ रहता है ये आजकल इतना मसरूफ है दलता कदम दलता कदम के अच्छा भाई समी के मैसेज जो हैं वो आए हुए हैं सुनने में आ रहे वाह दो मैसेज आए भाई उफरान भाई इतने ज्यादा मैसेज आ गए कि मैं आपको बता नहीं सकता छह हो गए अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप अस्सलाम टू उफरान भाई एंड ऑल लिसनर शादी में गया हुआ था किसकी अपनी है किसी और की और आने के बाद आप कह रहे रिक्वेस्ट प्ले कर दूं ये आप गुफरान भाई को बोले अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई मैं इस मामले में लकी हूं मेरे पास ससुराल मुझे भी बहुत मेरी सास ससुर मुझे अभी से बहुत समझाते हैं और मैं भी उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत देता हूं हमारे होने वाली भी माशाल्लाह अच्छी हैं वो तो अच्छी हैं कभी उनसे पूछा तुम अच्छे हो मैं उनका एक इकलौता दामाद हूं लेकिन आपके भाई ने कभी वहां जाकर एटीट्यूड नहीं दिखाया अब कोफ्ते फोड़ते रहते हो वहां पर पुलाव फोड़ते रहते हो निहारियां खाते रहते हो हमें तुम्हारे बारे में तो सब पता है भाई अब वो अपने मुंह से थोड़ी बोलेंगे यार यानी कि समझ रहे हो ना मजाक कर रहा हूं यार अच्छा जी और सास और ससुर को मेरी यही आदत अच्छी लगती है कि जिस दिन मुझे ससुराल जाना होता है मुझसे पहले पूछा जाता है क्या खाओगे मैं यही कहता हूं जो आपको अच्छा लगे यानी कि तुम खाओगे बोलो मैं कुछ नहीं खाऊंगा कुछ और चीजें भी होती हैं जो पेट में नहीं जाती सर पर पड़ती हैं आदमी कुछ भी बोल सकता है तो तुम बोलते क्यों हो कि आप कुछ भी बना ले मैं खा लूंगा वो तो बेचारे फिर बनाएंगे ना ये तो जू मायने बातें होगी ना गुफरान भाई कि बेटा क्या खाओगे आ रहे हो तो आप कुछ भी बना लीजिएगा अब जाहिर है वो तुम्हें दाल बनाकर थोड़ी खिलाएंगे दामाद आ रहा है भाई दामाद आ रहा है बोले भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा आपको मैं पहले बता रहा हूँ हाँ मैं आपका बेटा हूँ मैं बस ऐसे ही आ रहा हूँ आपके पास या मैं खुद लेकर आ रहा हूँ साथ में आदमी चार पांच लिफाफे ले जाए हैं भाई बाजार से बहुत कुछ मिलता है क्यों भाई समी आ गए तू पकड़ में आ गया भाई अभी फुल टाइम नदीम भाई आप बस कुछ चंद लोगों के मैसेजेस में इतना बिजी हो जाते हैं अब तुम इतने लेट आ रहे हो देखे भाई उसके बाद गिले शिकवे भी हो रहे हैं तो नदीम भाई आप बस चंद लोगों के मैसेज में हो जाते हैं मेरे मैसेज नहीं पढ़ते हैं अब मुझे पता ही नहीं है समी गायब हुआ हुआ है उसने पैकेज करवाया हुआ है दो दो तीन तीन घंटे का उसको पता भी नहीं चलता हाँ ज्यादा वो चार चार घंटे भाई बता रहे हैं। अब मना नहीं कर सकता नदीम भाई, मोहब्बत है उनसे, आए हाय कह रहे मना नहीं कर सकता, मोहब्बत है।
1: एक तो रात काली, हाँ ऊपर से मजीदिया कर लेते।
0: अच्छा मैंने वहाँ दाल भी खाई है नदीम भाई, वो तो तुम अचानक चले गए होगे तो दाल खाली। समी आज पकड़ में आ गए हो तुम, तुमने वैसे जुमले भी कसे हैं फुल टाइम। हाँ वो जो नहीं होती कमेटियां डालने वाली अम्माएं होती हैं, उस टाइप की बातें कर रहा है अभी। कह रहे वैसे ऐसा ही हुआ था कि मैं अचानक पहुंच गया तो दाल बनी हुई थी। हमारे अंदाजे बिल्कुल ओके टेक है। हाँ ये बता दो तुम्हें, अचानक जाओगे तो यही होगा, तो ये होता है बेटा।
1: शुगर है कुछ और चमक की नहीं
0: रखी। हाँ समी देखो बात ये होती है, क्या ये होता है बेटा कि दाल बनी हुई दाल भी खा ली यार, वो तो तुम अचानक तुमने, वरना वो पूछ रहे होते हैं क्या खाएंगे बेटा, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये बोलो यार आप जो बना ले। यार इसकी बात पर मुझे इतनी हंसी आ रही है। अच्छा पर मेरे लिए बिरयानी आई थी बाहर से, देखो यार ये दाल बनी हुई थी इसे दाल नहीं खाई बिरयानी खाई।
1: दाल ऐसे मेंशन कर रहा जैसे खा कर
0: आया, जैसे खा कर आया। गैर सभी अभी तुम्हारे सारे मैसेज और भरपूर तरीके से तुम पर तवज्जो दे रहे हैं हम, गुफरान भाई भी आकर बैठ गए, तो अभी मुझे कुछ और मैसेज भी पढ़ने दो। कह रहे शुक्रिया पर मेरे लिए बिरयानी आई थी, शुक्रिया सर। ये शुक्रिया तो उनको अदा करना चाहिए, आप कभी खुद भी बिरयानी ले जाओ यार, आदमी बिरयानी लेके चला जाता है, सिर्फ बिरयानी ले जाने में क्या अर्ज है, बगैर अचानक चले जाओ बिरयानी लेकर। हाँ ये होता है बेटा, तुम तो फुल दामाद बने हुए यार। अच्छा भी इकलौता भी है ना, लाडलाव भी होगा ना फुल खाम खाम।
1: चिकन फोड़ कर आया। हाँ लेके
0: जा रहे हैं।
1: अच्छा भी हम भी इकलौते ही हैं।
0: हाँ
1: तो चिकन भी फोड़ते हैं, दाल भी फोड़ते हैं, कढ़ाई भी फोड़ते हैं, ठीक है ना, और हर चीज फोड़ते हैं।
0: अच्छा मैं अपने बारे में बताऊँ, एक तो मेरा ससुराल ही बहुत दूर था, ठीक है ना, और मैं जाता ही नहीं था।
1: ससुराल भी बनाया अपने चांद पे,
0: मैं जाता ही नहीं था, और जब कभी जब चले भी गए तो आप यकीन माने कि मतलब उनको मुझसे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए मेरे सासों ससुर, उनको मुझसे हमेशा ही गिला रहा है कि आप रुकते नहीं हो, कुछ खाते नहीं हो, ये होती है बात। मैंने बोला आप मेरे अम्मी अब्बू टाइप के हैं, अम्मी अब्बू ही हैं आप मेरे लिए, वालिदैन की जगह हैं आप, मुझे दामाद क्यों समझते हैं, मुझे बेटा समझे आप जैसे घर में जो बना हुआ है वो मैं खाऊंगा।
1: मैंने बोला था
0: हाँ,
1: तो बोले खाना खाया करो ना।
0: समी सुन रहे हो ना, ये समी तुम्हें सुना रहे। अच्छा भाई मैं जब भी जाता हूँ 1000 से कम सामान लेकर नहीं जाता, मैंगो पिज्जा फ्राइज बर्गर कुछ, अब ये अपनी बातें बताएगा फुल टाइम। बेटा ये तो होने भाभी जब हमारी वो बन जाएंगी तब पूछेंगे हम कि क्या क्या गया है वहां पर। कह रहे आप तो पैसे बचा, तब गया आप तो पैसे बचाते होंगे, भाभी कहती होंगी चले ना नदीम अम्मी अब्बू से मिलने का दिल कर रहा है, आप कहते होंगे हाँ बेगम हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अबे मैं हमेशा उनको भेज देता था। बोलता था दो दो महीने रहो कोई मसला नहीं है। अच्छा वैसे अभी कुछ ऐसा नहीं, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया बहुत हो गया। समी भाई हम सिर्फ आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं यार, आप नाराज मत हो, अब बातें बहुत हो गई। मेरा ख्याल है अब जो है गाने की जाने फौरन से पेशतर जाया जाए। और हाँ अभी अमीन साहब जो हैं हमारे, अमीन चार्ली चैपलिन जो है उनकी जानिब से, हाय एल जी उमर रुबाब को हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं, और अपनी जानिब से भी कर रहे हैं, उमर रुबाब ये वाला गाना। ए किथे गया, ए एलो फड़ो।

पूछेंगे हम कि क्या क्या गया है वहां पर। कह रहे आप तो पैसे बचा तब गया आप तो पैसे बचाते होंगे, भाभी कहती होंगी चले ना नदीम अम्मी अबू से मिलने का दिल कर रहा है, आप कहते होंगे हाँ बेगम चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अबे मैं हमेशा उनको भेज देता था बोलता था दो दो महीने रहो कोई मसला नहीं है अच्छा वैसे अभी कुछ ऐसा नहीं है, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। समी भाई हम सिर्फ आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं यार, आप नाराज मत हो, अब बातें बहुत हो गई। मेरा ख्याल अब जो है गाने की जाने फौरन से पेशतर जाया जाए। और हाँ अभी अमीन साहब जो हैं, हमारे अमीन चार्ली चैपलिन जो है उनकी जाने से हाय एल जी उमर रुबाब को हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं और अपनी जानिब से भी कर रहे हैं। उमर रुबाब ये वाला गाना ए किथे गया ए एलो फड़ो।

अच्छा वैसे अभी कुछ ऐसा नहीं, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। समी भाई हम सिर्फ आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं यार, आप नाराज मत हो। अब बातें बहुत हो गई, मेरा ख्याल है अब जो है गाने की जाने फौरन से बेशतर जाया जाए। और हाँ, अभी अमीन साहब जो हैं, हमारे अमीन चार्ली चैपलिन जो है, उनकी जानिब से हाय एलजी उमर रुबाब को हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं, और अपनी जानिब से भी कर रहे हैं। उमर रुबाब ये वाला गाना, ए किथे गया, ए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे हाय हाय एक बार कहो तुम। अच्छा भाई मुश्क का मैसेज आया करिए, समी भाई हर वक्त रूठी हसीना बने होते हैं या पुप्पो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मुश्क, समी भाई ऐसी नहीं है। और नौरीन मेरी बहना के बहुत सारे मैसेजेस आ गए, नौरीन आई एम रियली सॉरी। और मैंने बड़ी लेट मैसेज देखा आपका, मेरी बहन फैसलाबाद से सुन रही होती है। सर से लेकर पांव तक सारी कहानी याद है, आज भी वो शख्स मुझको मुंह जबानी याद है। वाह वाह वाह वाह वाह भाई, बहुत ही बढ़िया शेर, मजा आ गया। मखवी का मतलब है छुपा हुआ, पोशीदा, ये जो जाहिर ना हो। क्या मिसाल ले लीजिए जरा इसकी, उसने अपनी बात मखवी रखी, यानी बात छुपा कर रखी। क्या बात है भाई, जीती रहो मुस्कुराती रहो। संजू ने भी इसका जो है मायने भेजा और आपने भी बताया, थैंक यू वेरी मच मेरी बहना। और इन्होंने उसी वक्त भेजा था, वो अलग बात है कि साकी के मुझे होश नहीं वरना मैं कुछ भी हूँ, एहसान फेरा मैं होश नहीं, मैंने शेर पढ़ दिया। वो अलग बात है कि मैंने मैसेज देर से पढ़ा। नदीम भाई वही सॉन्ग आज फिर लगा दें, हाय हाय काफी दिनों के बाद गुजारिश कर रही हूँ सॉन्ग की। मेरी बहन हम जरूर चलाएंगे,

खान भाई को कह दिया मैंने। मुश कह रही हैं कि मैंने याद किया था, बता दें इतना भी ससुराल ना जाए। सभी सुन रहे हैं, सभी अभी समी की मैसेज के इंतजार रहेगा। अरे मिर्जा साहब की कहने पे जियो जियो लाला जमा खान दा गुलून राज, क्या बात है कमाल पख्तो टच। नदीम भाई मैं अभी ससुराल के मामले में बरी हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन बातों से सीख ले मेरा बच्चा। और एक बार कहो तुम मेरी हो, ये भी इनको गाना बहुत पसंद आया भाई, बहुत पसंद आया है। मिर्जा साहब सही जानते पे हो तुसी, हांजी ते हांजी। और हमारी प्यारी सी बहन हलीमा पठान भी आ गई हैं। मेरी प्यारी सी बहन माजरत चाहूंगा थोड़ा सा लेट पड़ा, लेकिन पढ़ रहा हूँ। सलाम नदीम भाई, क्या हाल है, शुरू से शो सुन रही हूँ, बस मैसेज अभी किया। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। और ये कहती हैं कि वश्त ने जिंदगी की रवानी उजाड़ दी, वश्त ने जिंदगी की रवानी उजाड़ दी, एक वाक़े ने सारी कहानी उजाड़ दी। कमसन बदन पे बोझ है बूढ़े दिमाग का, कमसन बदन पे बोझ है बूढ़े दिमाग का, संजीदगी ने मेरी जवानी उजाड़ दी। हाय हाय हाय जॉन एलिया साहब, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, आज तो भाई बहुत ही आला भाई। भाई लोग ऐसे ऐसे इंतखाब भेज रहे हैं कि भाई कमाल है। संजू क्या कहती है भाई, आज भाई रूहे मन जो है ना वो फुल टाइम ओके टेक जा रहा है। और हाँ अयाज के शो में कहा था, तो अयाज ने कहा था अब नदीम के शो में जाएं, हमारा अच्छा आरजे है, मसरूफियत की वजह से आपके शो में नहीं आ रही थी। अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अयाज का शो ऐसे टाइम पर होता है जब जाग भी रहे होते हैं और मसरूफियत भी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इट्स ओके संजू, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपके पास जब वक्त मिले आप जरूर शिरकत करें, और जब नहीं मिलता तो इट्स ओके। सलीम एमन भैया शुक्रन, आप याद रखते हैं। और कहती है कि रूहे मन पूरी दुनिया तुम्हें एक आम इंसान की तरह देखती है, और मैं तुम्हें पहले दो लफ्जों की तरह। संजीदा का असर होने लगा, यानी कि नाम का, ये अमीन के लिए गाया, अमीन ने कहा था ना। चले जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अभी ये वाले मैसेज भी सारे मैं पढ़ लूं। शनाया क्या कह रही है, दामादों की इज्जत ना को इज्जत ना दो तो उनकी अना पर बात आ जाती है। आज का शो सुपर डुपर है, जबरदस्त है, सॉन्ग भी जबरदस्त। थैंक यू शनाया। समी कहता है कि मुश्क अभी ससुराल वाले लेवल पर आई नहीं है।

असल में लिख रहा था नौरीन, वरने मैं भूल जाता। हाय सो स्वीट, यानी ऐसे हजारों आम आप पर कुर्बान मेरे प्यारे से भाई। अच्छा कह रही है मैंने भी मुल्तान से मंगवाए हैं और आज ही आए। अच्छा आए हैं तो आपने दिखाए और हमारा दिल ललचाया है। अरे नहीं मेरी बहन, आपने कहा हमारे लिए इतना ही बहुत है। बहुत खूबसूरत इंतखाब था संजीदा बहना का, लाजवाब। संजू खामोश रहती है आजकल पता नहीं क्यों, हालांकि अभी इसको गाना डेडिकेट करते हैं फिर पूछेंगे इससे। मैंने बताया नदीम भाई मख्फी के माने, बिल्कुल ट्रांसमिशन प्रॉब्लम ठीक करें नदीम भाई। गुफरान भाई साथ ही बैठे हुए हैं।

अरे हाय, बहुत अरसे के बाद हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर आ गई हैं, ताहिरा मसूद। कह रही है अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। खैर आफियत के साथ आए। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इसी बात पर हम जा रहे हैं जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने, और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें की थी बहुत से लोगों ने। ठीक है जी, हम आपको बताते हैं किन किन ने। नंबर वन जनाब हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब। नंबर टू हमारी पूरी जो प्यारी सी मेमन फैमिली है, जिसमें हमारी प्यारी सी आयशा मेमन ने तमाम मेमन फैमिली को ये डेडिकेट किया है, ना कि इरफान मेमन ने या अनम ने, आज आयशा मेमन ने डेडिकेट किया है तमाम मेमन फैमिली को, जिसमें दुआ भी है और हमारी प्यारी सी बहन महानूर भी है, हमारी प्याजी सी बहन रूशा भी है, हमारी प्यारी सी बहन सायरा मेमन भी है और सलीम मेमन भी है। तो आप सबके लिए ट्रैक चल रहा है जनाब, एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने. म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये अल्लाह गुला जारी है. सारी ये मैसेज में आपकी मोहब्बतें उमंड रही हैं. अगर मैं कोई मैसेज ना पढ़ सकूं तो बुरा ना मनाइएगा. तानिया हसन जी भी आ गई हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे और उनके मैसेज को अभी हम शामिल करेंगे. और तमाम सुनने वालों को वैसे उन्होंने सलाम कहा है, बाकी तफसील हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे उनके मैसेज की. और जनाब मानो ने थैंक यू कहा है सॉन्ग के लिए. जीती रहो. अयूब लाला को सलाम. और आप सफर पर हैं, दुआ है कि आप खैर आफियत से वापस आए. और सबके लिए बेतहाशा दुआएं सलीम मेमन की जानिब से. और पगली पगली, अरे चुड़ैल बहना, चाचू नहीं चार्ली भैया. ठीक है अब से भाई चाचू नहीं चार्ली भैया, या चार्ली चैपलिन भी तो कहा था ना. जब भी मैं किसी सन्नाटे वाली गली से गुजरता हूं तो अब डर लगता है, मुझे लगता है कि विश्व भी आ रहा है. ओए होए होए. अच्छा भाई जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहना कह रही है, वो आपने भाग का मुझको गुलाब कहता था, उसका फर्ज मेरी देख भाल भी करता. उसका फर्ज था आए हाय उस वो अपने भाग का मुझको गुलाब कहता था, उसका फर्ज मेरी देखभाल भी करता. आए जरीन नूर जबरदस्त. बस जरीन नूर से हमें याद आया कि हमने एक गाना जो है वो संजू को अपनी आवाज में डेडिकेट करना है. अभी यही समझ में नहीं आ रहा था कौन सा. वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, फौरन से पेशतर आप लोगों के मैसेजेस में सिर्फ नाम पढ़ सकूंगा. और ये लास्ट लिंक है मैसेजेस का, रेहान जो है वो सुन रहे हैं. थैंक यू वेरी मच रेहान. और नदीम मुझे आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है. नफीसा रानी थैंक यू वेरी मच. नफीसा ने कहा फौजिया सोमरो का गाना हमने चलाया था नफीसा. और सलीम मेमन का भी एक मैसेज आया है. फरहीन शहजादी मेरी प्यारी सी बहना आपने भी मैसेज किया है, सबको सलाम कहा उन्होंने. और अभी आप लोगों के जो है मैं मैसेजेस में जो शायरी है वो शामिल नहीं कर सकूंगा. हाय हाय नदीम भाई शो में रौनक लगा दी मैंने आते ही. या तुम हो ही रौनक, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, मेरा प्यारा सा भाई है ही रौनक. और मुश्क कहती हैं अच्छा खैर वो अभी ये नाम में के हवाले से कहा. अब फौरन से पेशतर जनाब हम एक गाने की जानिब जाते हैं जो कि हम फरहीन की सॉरी जरीन नूर की जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं. और गाना कौन सा चलाऊं, अभी मैं कौन सा गाऊं, मैं ये सोच रहा हूं. चले भाई यही वाला थोड़ा सा सुना देते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा. तो ये ट्रैक जो है स्पेशली संजू के लिए जरीन नूर की जानिब से, आवाज है नदीम अख्तर की, ट्रिब्यूट टू वाइडल साइंस.

वेलकम बैक है इंगे सुनियो यार, आज हकीकत ऐसी रही है कि आप लोगों के साथ मोहब्बत में प्यार में वक्त का बिल्कुल ही पता नहीं चला और वक्त पुर करके उड़ गया। बेतहाशा मैसेजेस ऐसे हैं जो कि मैं नहीं पढ़ सका, खुसूसी तौर पर हमारी तानिया हसन जी के मैसेजेस जो हैं वो मैं सारे शामिल नहीं कर सका। तानिया जी आपसे बहुत बहुत माजरत है। मेरी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संजू कह रही हैं हाय, कोई खुशी का गाना गा लेते ना। भाई मेरे सामने अचानक यही आया संजू, आपको 100% जो है बेहतरीन किस्म का गाना डेडिकेट करेंगे कल के शो में, ये हमारा वादा रहा। अभी सिर्फ वक्त की कमी की वजह से जो है वो सिलसिला कार कुछ ऐसा रहा कि बस जो सामने आया जो हाथ में आया बस यानी कि समझ रही है ना आप तो अभी जनाब

और और और गुफरान भाई को हमने बुलाया है क्योंकि एक गाना जो है वो हमने लास्ट में चलाना है। और संजू को मैसेज हो गया हमारा, और कसाई भी आ गए हैं। कसाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते जनाब हमारे प्यारे से जो समी हैं उनका ट्रैक जो है वो हम आप सबको डेडिकेट करेंगे, खुसूसी तौर पर समी की जानिब से हमारी होने वाली जो भाभी हैं उनको डेडिकेट करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.